0: रहना है। तो फलस्वरूप एक उसके वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी। पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है? तो हम जूट के थैले, वुबन वुबन बैग, जो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ, ट्राइस ब्रिक्स हुआ, सीमेंट उद्योग हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक तत्व उनकी भरपूर उपलब्धता है। तो सीमेंट और पेबर्स ब्लॉक वगैरह या फिर ट्राइस ब्रिक्स की काफी संभावना इस क्षेत्र में है।
1: और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन वो ही समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है। तो क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है, या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक RCT की स्थापना की गई है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे टीकमगढ़ जिले में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना। हमारे इच्छुक युवा, हमारे इच्छुक भाई बहन जो भी उद्यमिता संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक आवेदन RCT टीकमगढ़ में कर सकते हैं, तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी तो उनको सूचना दे के उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज, हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है, जिसके दिन अलग अलग रहते हैं। तो जो भी युवा इच्छुक इच्छुक है उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया कराते
1: सर कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग्स मुहैया कराते हैं?
0: हैं। ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता
1: अच्छा,
0: है,
1: ट्रेड के ऊपर।
0: जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है, 20 दिन का रहता है, किसी का 1 महीने का रहता है, किसी का 5 दिन का भी रहता है। वो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है कि
1: जी
0: आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी
1: सर,
0: जाएगी।
1: प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो क्या बैंकों में उसकी, जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है। वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया लिया गया है। तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है।
1: अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजनाएं संचालित की जा रही हैं?
0: जी, वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजनाएं संचालित की जा रही हैं रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दूं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण सेवा उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है। जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की योजना है। इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है, व्यवसाय शामिल नहीं है। और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है। इसमें सेवा, व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती है।
1: अच्छा, केंद्र सरकार की सर कौन सी
0: हाँ,
1: योजना है?
0: एक केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है।
1: अच्छा,
0: और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों को ही कई स्थापना की जा सकती है। इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
1: चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अपना रेडियो अपनी बात है, एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश धाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए।

क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए। एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना, योजना आपको बनानी चाहिए।

तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, सब तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए। संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए। खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम बिमल जी के पास ले चलते हैं, और बिमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हरप्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।

0: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं, या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे जिससे कि हम करते, तो उसका ये कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाएं जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है।
1: जी।
0: अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, तो ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।
2: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन

करते हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों, अभी आपने बिमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना, समझा, और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए, तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उप निरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पड़ले पर अगर रचनात्मकता और विचार, खोज और नवीनीकरण देखते हैं, तो दूसरे पड़ले पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पड़नों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9219207749। व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जोड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड है 90.4 ताराग्राम और छतीगला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं।

0: विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं, सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें करियर बना सकते हैं, कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं। तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि 12th के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, IAS IPS की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खास तौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है, बिल्कुल। बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विभूचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आपके पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन मैं आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करेस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं, और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के, बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पे जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल या छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहाँ देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम, जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहाँ पर आप जो अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार हैं। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में ही हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य, चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है, और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रदानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल वे खूब कर रही हैं और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब हैं। तो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र की, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
0: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खासतौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर
1: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा। दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है, मैं इस बात पर आने ही वाला था। हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं, उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन mcu.ac.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है, और निमाड़ में हमारा खंडवा परिसर है, जो और इसी तरीके से हमारा एमसीयू दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स, जिनको हम यूजी पाठ्यक्रम कहते हैं, वो एनईपी आधारित 4 वर्षीय हमारे यूजी पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास बीए जनसंचार पाठ्यक्रम है, और साथ ही बीबीए मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास बीए जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है, जिसको हम बीए JCW कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उसके लिए उनके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमलिव और बीलिव पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं, और बीच में विशेष व्याख्यान है मास्टर क्लासेस के लिए, हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशंस हैं, वहाँ की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे, और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं। तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री, उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वर्ड्स को, क्योंकि कानों का माध्यम है तो इसमें आप रिपीट नहीं करें, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीक चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है जो प्रिंट माध्यम है। रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है, तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है।
0: बिल्कुल सर,
1: इसमें कोई भी अंतर वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं, और ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो अपने ऑफिस में, यात्रा के दौरान, कार चलाते हुए, अपने दफ्तर में, इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है, अगले 3 हम लोग 97 वर्ष रेडियो प्रसारण के भारत में कर चुके हैं, और रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आभारी हूँ, और उन सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
0: सर, इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर, इसमें से भी 2% निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है, तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें, ये सब।
1: जी, हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो
0: जी
1: उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला
0: जी
1: चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता

0: एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है, और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहाँ पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है, तो उससे प्रेरित होकर भी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ, तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात समझ में आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेकर और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है। तो हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है। अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे, तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आप उपयुक्त समझे 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है, और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं, और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर, और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर,
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम यही कहूँ चाहो कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नु रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें, यही बात के साथ जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना कैरियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खास तौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथ ही इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के 5 ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं।

आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

नीति अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। ई कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाती और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बात ही अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि आज जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कौनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो उन्हें जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या को के जैसे कि जो मानदान रहेंगे बेओरे देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: कहाँ नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। कहाँ करती हैं अम्मा?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहे।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ 20 साल से।
0: अच्छा तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने है?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौरा है, ढाल के नीचे राज डॉक्टर, आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में खूब है तो?
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, तीन बहने थे।
0: अच्छा तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते हो?
0: अच्छा आपके घर पे क्या काम हो तो?
1: वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब कहते हो, जगह जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और आप बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा।
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा 10 रुपया?
1: हाँ 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा।
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए दे देती महीना भर में।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहता
1: है।
0: अच्छा अगर आप आपके बचपन की बात करें तो हाँ। बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल में।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो उन्हें बचपन में काम तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसमें और छोटे जो बचपन होते ही जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रह, जब तो खेलता ही खाता।
0: हाँ तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये खेल खेलते थे और क्या।
0: अच्छा
1: चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा
1: साउंड को मुझे चपेटा कलर।
0: अच्छा अच्छा
1: जी खेल रहा है।
0: तो साउंड में आप गीत भी गाती हूँ? हाँ। खेलत में गीत तो एक गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
0: अच्छा गीत ही नहीं आते? पहले तो गा सुनियो आप।
1: अब मैं भूल गया, तो बड़ा को ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बड़ा को नहीं है आपको? लेकिन बड़ा को नहीं लगा
1: था आपको? बड़ा को नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाती है?
1: कौन नहीं गाते हैं
0: आप? अच्छा आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियां को जाने कहाँ कहाँ गई, को अंगूरी ना तो काउ को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई सब।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ मिल जाते
0: हो? मिल जाते
1: कभी कभी इकट्ठे हो जाता, खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता।
0: अच्छा लगते। अच्छा अम्मा जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी रहती, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलाती?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिर आकर नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, ये पहन लेते और हम तुमने फिर आकर दे रही तो ये पहन नहीं बस, और यही पहरा होता।
0: मतलब कोनो अलग से नहीं
1: है? कोनो अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितनी उम्र में?
1: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भाई आती
0: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी।
0: बिल्कुल नहीं जानती? अच्छा जी से आपकी शादी हो रही थी वो आपने देखा तो?
1: हाँ।
0: पहले से देखा तो?
1: हाँ। नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते, पहले ना कोई मोड़ी देखा था ना कोई मोड़ा देखा।

0: सताते ही हमारे बाप माता ही हम 8-9 साल के सताते हैं, 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, सब 9 साल की शादी कर रही थी। तो जिन दिन को काम करते हमारी माता ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तुम्हें 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 रुपया उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया पूर्ण मदाए थे।
1: अच्छा,
0: तो वही माता ने उठे कई मत
1: 500 रुपया
0: नहीं सबसे जैसे कछ लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे दे वैसे ही के बिटिया को पुण्य ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा। अच्छा, बड़े बड़े सेठ लोग
1: तो
0: सही से हमारा ब्याह हो गया।
1: अच्छा, जब आपकी ब्याह होगा इसके बाद कितने आपकी ससुराल दे दें राधापुर में भाई है
0: ना? हाँ,
1: राधापुर में ससुराल है आपकी। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्म में आपके भाई हैंगे, जैसे पहले दिन तेल मंडप
0: पहले मंडप तेल लगाओ फिर मंडप बाओ फिर टीका।
1: अच्छा, 3 ही दिन को ब्याह हो तो?
0: हाँ, 3 दिन को होता।
1: तो बरात 3 दिन मिली रही थी?
0: नहीं, 1 ही दिन 3 दिन मिली रही थी बरात।
1: तेल वादना
0: नहीं आते टीका के देना।
1: अच्छा,
0: और फिर भावर मावर बरतती फिर वो देना छोड़ी जाती बरा दूसरे दिन जाती।
1: जयमाला डरी तो
0: हम जयमाला नहीं डरी बहन, हमें तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन पे खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
1: अच्छा,
0: और जब तुम जो होट पर लाल बापो में लाई।
1: अच्छा, जो सब पहला मतलब जयमाला
0: नहीं भेजी थी, मड़वा की तरह सीधो मड़वा जयमाला नहीं लड़का मड़वा डाला ना चावल मार दे।
1: अच्छा, चावल जी का डाले जाता आपको कुछ बताओ?
0: नहीं बता, हमें नहीं बता।
1: अच्छा, चावल को कुछ पता ही नहीं डाले
0: मड़वा के नीचे और खड़ा कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मरो चढ़ो
1: फिर कहाँ चढ़ो तो आप
0: हमें पेज ना चढ़ी थी 1 किलो के खम वज्जा
1: 1 किलो
0: की पेज 1 किलो के पेज ना खम वज्जा और जो इतने पैर थे पे नहीं थे हाँ दे चढ़े थे।
1: अच्छा,
0: तो अब रखे हो आप? हाँ, की बात छह लड़का होगा छह लड़का के ब्याह कर ले।
1: अच्छा,
0: से
1: सही बात है। अच्छा, आपकी विदा कहे भाई दी?
0: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा वही में वही थी
1: पिता
0: नहीं होते तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
1: बैलगाड़ी में। पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी थी?
0: हाँ, ऐसे कबम बैठ जाते लेकिन वैसे बैठ जाते लेकिन विदा होके हमारी गाड़ी गई से आई थी।
1: अच्छा, बैलगाड़ी से कैसा लगा
0: हुआ बैलगाड़ी से होती पहले विदा सवाई की होती हमारी का पहले देखते वाहन कहाँ थे और चा तक नंगा जाते खेला तक नंगा जाते अब तो एक कदम नहीं नंगरा वो आदमी
1: अब तो अगर तुम्हें भी जाना है
0: अगर तुम्हें कारस देव में जाना तो गाड़ी
1: से जाना
0: जाना
1: सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आए तो इतने ससुराल में कुकू मिलो आपको?
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
1: अच्छा, आपके में नंबर की है?
0: हम दूसरे नंबर के नानी दादो
1: नंदन की शादी हुई
0: हाँ।
1: शादी के बाद
0: बड़ी
1: हती।
0: हाँ।
1: अच्छा, तो फिर आपके
0: का
1: रस्म में
0: मतलब कंकन हाथे लगे थे 2-3-4 दिन रहे थे फिर चले गए थे।
1: अच्छा, खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई?
0: खिचड़ी बनाई थी
1: और आपने खुद बनाई थी?
0: नहीं बना पाई थी हमने हमारी जेठानी ने बना दी थी।
1: अच्छा,
0: और चमचा से तरवा दी थी
1: नाम हुआ
0: हाँ और द्वारे में और डरवा दे।
1: अच्छा, और फिर जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई और सबने खाई तो फिर कागज
0: नहीं
1: मिलो तो
0: हमें नहीं कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
1: वो देने उल्टो नहीं हो रहा
0: पहले देता ही हते अब अभी देता मोरन के जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा बहू से सास लेते हुए पैसा चाहे 10 धरे चाहे 11 हो चाहे 100 दे लेकिन वो सास ले और तो रखत बहु तो बेबी सास ले।
1: अच्छा,
0: जी की सास ना हो तो जेठानी
1: ना तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुला
0: नहीं हमारे समय में नहीं खुला।

0: खेती वेती तो रात चलाते रहते।
1: अच्छा, और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की नहीं पी सकती?
0: चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से।
1: कितने बजे उठाती हैं आप?
0: 4 बजे उठ जाते है। 4 बजे से पी सकते, 5-6 किलो अनाज पीस लेते।
1: 5 किलो रोज पीसने?
0: हाँ रोज। तो जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
0: हूँ? 4 बजे से भी पी सकती।
1: संगे पी सकती
0: हूँ? ना कबू संगे कबू अलग।
1: काम
0: गोबर मोबर डाल रखते।
1: कितने गाय भैंसे
0: होती हैं? 10-12 गैया होती। गोबर मोबर डाल रखते, झाड़ा झूठी
1: करते।
0: फिर एक जनी रोटी बनाने लगती, एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा, वो कर लेती।
0: फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते, रात चलाते दिन भर।
1: अच्छा, वो हाथ से बहाने आते नहीं
0: है? बैलेंस
1: है, बैलेंस
0: घर में नहीं आती।
1: सब
0: वही चलाते रहते, कबू जेठानी चलाती कबू हम चलाते रहते।
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपकी? अच्छा, आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा
0: है? 6 लड़का।
1: 6 लड़का और लड़की?
0: लड़की नहीं है।
1: लड़की नहीं है इनको? तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ जो
0: हुआ? हाँ, का पढ़ा मैं परेशानी हाथी से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा,
0: 5-5 पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा, सरकारी। हाँ, तो अब सबकी शादी हुई?
0: हाँ सबकी हो गई। सब नाती ने तुलन की हो गई।
1: अच्छा, नातीन की भी हो गई? नाती है?
0: 6 नाती है, 6 नातने
1: हैं। अच्छा,
0: तो मतलब बड़ा परिवार है? हाँ, तो 6 लड़का है, तो 2-2 है सबके।
1: अच्छा,
0: और एक के 4 है बड़े के, 3 मोड़ी है। मोड़ी तो आप बिरोबर हो गए। ना मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा, एक के छोटी, एक के मोड़ा होगा, एक के मंझले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो।
1: तो बहुत बड़ा परिवार है आपको। अच्छा लगा थी
0: तीन भाई
1: सब जगह कैसे खेलती है आप अपने?
0: सुबह तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस कर खेल।
1: फिर गाना गाते
0: अब भूल
1: गई आप? भूल नहीं आते, याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी है अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
0: 20 साल से ज्यादा हो गई।
1: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसे लग गई थी? मतलब
0: पहले उनने 4 जन्म के कागज दिए थे भर के, तो सब ने 200 रुपया में लगते।
1: अच्छा।
0: तो सब जन्म ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने।
1: हाँ।
0: हमें नहीं करने से फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकत। इन्हें 350 में लगते, हमें 200 रुपया।
1: धीरे
0: फिर हम इनके ससुर बोले लाला हम दे दे वो करें तो मैं 2-4 पहली नाच खा दे के लाने बच्चा का करा। फिर इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच, हम पानी भरे आते हैं। फिर लगे रहे इनके तो पानी तो अभी छोड़ दो, हमने बनक नहीं लगे। जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब इसे पानी भरे उनको, मतलब खावे पीवे की परेशानी से, जैसे नहीं तो जो दे तो सकते खाओ, नहीं करते तो को दे।
1: सही बात है,
0: दे रहा तो को भी ना
1: करो। और आज आपको कितनी मिल जाती? मतलब आपको घर चला भी ला के मिल जाता आपको?
0: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना, नहीं 2,500
1: होगा।
0: 350 आए हमारे, फिर 1500
1: भाई। तो फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीखी आंगनबाड़ी कर ली। फिर से
1: आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें?
0: चौपे में तो महत्व देखो, आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे हैं?
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है जीवन के?
0: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़वे की का सोच रहे बताओ?
1: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही
0: है, सब
1: मिल
0: रही है। लेकिन मिल रहा है, पहले कहाँ मिल रहा?
1: हाँ, पहले नहीं मिला तो, लेकिन अब मिल रही तो अभी के नाम में पढ़ाई चाहिए है ना? बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या चाहती हूँ आप अपनी तरफ से?
0: और का
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
0: अपनी को तो सब हमारी मोड़ी सब 8-8 पढ़ी नातने, नाती पढ़े
1: पढ़ाना चाहिए।
0: हाँ, सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो, को बड़ी बड़ी हो गई, सब 7-7, 8-8 में करके छोड़ दो, ब्याह पढ़ दो ना तो धन की।
1: बहुत बढ़िया, आप
0: दोनों को पढ़ दो, अब दोनों ही पढ़ रहे हैं।
1: चलो बढ़िया अम्मा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है वो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है वो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है वो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी, कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढत थी, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उनकी शादी कर दो, या फिर बड़े होके सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है वो, घर को काम ही देखने आ है वो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलाने में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपनो समय होते है वो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे, या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ये लाना हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैं, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है, क्या आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैं, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते वो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और किसान साथियों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे।

0: खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के अगली फसल में काफी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है। प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और खास तौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीजें रहती हैं, उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा। इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर, वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसमें मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्ट्रेन से, जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है, और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला इटरेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं, ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं। तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं। तो उसकी वजह से आप सब जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
2: बिल्कुल। तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
1: तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपेरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपेरल, और वो बायो बेस्ड भी होगा, क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस पर काफी वर्क करा, और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं, इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन अ लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
2: जी, तो आपने यहाँ पे सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उसी कैसे बेहतर है ये?
1: पहली बात तो जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉर एवर फाइबर्स आर देयर, लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है, हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर, क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है, वो सारे सिंथेटिक वेस्ट में बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पोल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है, क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डी पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो नेगेटिंग इंपोर्ट रिलायंस.
2: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसेलियम को यूज करके और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे
1: हैं? हम जो मशरूम, जैसे हमें माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है, जो फूडिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं. तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज. तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है, जो हमने अचीव कर लिया 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल. तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, और ये हम उगा रहे हैं उस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे. तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं. वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है. और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं. उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे, और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं फायर रिटार्डेंट हाई परफॉर्मेंस वेयर.
2: जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं है, बाहर से खरीदने पड़ते हैं. तो किस तरह की समस्याएं जो है, मतलब ऑब्वियसली डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये?
1: क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है हमें, हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं. हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं, तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग. तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं, हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं. तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए, हमें कुछ भी बाहर से लेना ही पड़ रहा है. और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं. अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है, तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं. दे आर पार्ट्स दैट आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर. तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच हैज इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट कैपेबिलिटीज. तो जब हम ये बना लेंगे, एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा, एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी, जो कि अभी नहीं है.
2: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो किस तरह की जो चुनौतियां वो खत्म हो जाएंगी?
1: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है. तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है. सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपेंस, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है. उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को. और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है.
2: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होते हैं उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
1: तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर. उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं. तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंट्री लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं. तो वो डिग्रीज होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट. तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितनी दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक उस आग में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ताकि इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आए और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने, उनको काफी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए.
2: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं. अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक.
1: तो
2: क्योंकि अभी हम सिर्फ अपैरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट है, क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पे भी यूज होता है, क्या वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्री वेस्ट से, ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रही हैं?
1: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टेड

0: लेयर है विच इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टेंस, सीट, कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसी कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो निगेट हो जाए। तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे डिफेंस तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सिविल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में, डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है।
1: वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्री वेस्ट से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा?
0: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत जरूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है, और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है, और उनके जो वो, क्योंकि उनके लिए वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं जिससे कि AQI बढ़ता है और पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें।
1: यहाँ पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं?
0: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं, बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं। तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं जो कि हम इन सब का एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है उसको बना के फिर उसपे हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं।
1: क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नजर आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी?
0: तो जैसे हमारा ध्येय यही है, इस पूरे प्रोडक्शन में भी हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं जिसके तहत वो पॉल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है, जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है, तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं, तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा या हम उसे रिसाइकल करके, क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और इसके अलावा हम UN की SDG गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उससे भी अलाइंड हैं, 12 हमारा मेजर गोल है विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड हैं, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, तो हम लगभग 10 से 12 गोल्स से अलाइंड हैं, लेकिन UN SDG 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं।
1: तो आपकी जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है, लेकिन जहां तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रही हैं मशरूम माइसेलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी?
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई

0: परफॉर्मेंस वेयर जो है वो यूज होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं, जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पद आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें।
1: जैसे मशरूम माइसीलियम है, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नजर आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे?
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक। लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी। तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है, उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। और इसमें हम जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पर हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है, हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं। जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें, तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करें और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके, जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सकें जहां पे सभी थ्राइव कर रहे हो साथ में।
1: अभी तो ये लैब स्केल पे है, लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे? और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी?
0: हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी हुई है, जैसे हमारा जो फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा, तो इसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला इटरेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का। जैसे ये दोनों चीजें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीजें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे एंड वी विल सेल आउट दैट। और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज सस्टेनेबल। जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को, जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है, क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है और अभी हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर। तो जितना भी मार्केट है, इट्स अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है। सिंथेटिक से पीपल वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल बायो फैब्रिक्स, और अब बायो फैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो क्योंकि ये 360 डिग्री इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टूवर्ड्स दैट। उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है, तो इसकी वजह से कई चीजें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज को प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे, पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे, और फिर हमें जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे, एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफ कोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट, बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल। हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी, और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी, जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें, क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी।
1: न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने इजाद

0: की है वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं। तो भारत सरकार की ये जितनी नीतियां हैं, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, और जो उन्होंने आईडेक्स इस्टेब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है। ये बहुत कम ही होगा कि किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए। तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि ये आप लोग कुछ जीते, वो इवन ग्रांट्स देती है। अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है। तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस एक साल के अंदर, वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए हैं। हमें काफी सहायता, आर्थिक सहायता मिली है उससे। इवन हम जो इंक्यूबेटेड है अभी IIT कानपुर में, उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है। ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम आईडेक्स के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर IIT कानपुर को बना पाए, जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है। और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है, उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध हुए हैं, और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज्यादा सहायता मिल रही है। क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं, R&D बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर रिलाई करता है, और क्योंकि हम एकदम नई टेक्नोलॉजी कुछ बना रहे हैं तो हमें इस चीज के लिए बहुत सारे टेस्ट करने हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन IIT कानपुर ने हमें इसमें बहुत सहायता करी। तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 90% टेस्ट हमने करवाए हैं, वो आधे से ज्यादा हमने IIT कानपुर से करवाए हैं, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है टाइम अवेलेबिलिटी में भी, और किन्हीं तरीकों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है हमें IIT कानपुर के द्वारा। तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है, लेकिन आगे चल के भी, क्योंकि R&D जब तक हम सैम्पलिंग पूरी कर ले, पहला MVP बना लें, तब तक विच इज मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप, जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा, तब तक हम चाहते हैं भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले। तो हम और भी चीजों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा, उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं।
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये सारा हम एग्रीकल्चर वेस्ट यूज कर रहे हैं, फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है। फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए, उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए। तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज कर रहे हैं, फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट, वी आर अपसाइक्लिंग इट और रिसाइक्लिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें, वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें, 7 से 10 रुपए किलो के बीच में। अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा, जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट। तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं। तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे।
1: तो अगर मैं आपसे आपका विजन और मिशन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चल रही है भैया?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है, और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे, पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहां कोई और ना जा पा रहा हो। तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो, और अभी जितने भी सिंथेटिक चीजों से चीजें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं, और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज में। और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स, जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है, उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे। हमारा USP यही है, और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहाँ पे हम दिखा सके कि अब ये सब कुछ हो गया है, अब बस हमें जग जीतने की देरी है।
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप में थोड़ी भी लगन है, कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी, उसकी मदद होगी, लोगों की सहायता होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले, पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है, जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज करें, क्योंकि हमारे भारत को अभी सब चीजों की बहुत जरूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी, जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच रही है कि देश को किस चीज की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक

0: बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी आप अपने मिशन और मिशन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना और इस चर्चा को जो चूंकि हमने कार्यक्रम जो उठाया है वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुँचेगी, किसान साथियों तक पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस पते पर। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। फ़ोन नंबर है हमारा 9219207749। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी को। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को, और गीत के बाद फिर सुने अपन स्टोरी को। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

देखो दोस्तों, जो कितनों बढ़िया गीत अपन सब जरन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है दोस्तों। ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों, ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों, आप ऐसी बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ये वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए, परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किंकर्तव्य मूड रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढे जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है, ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों, इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से, और दोस्तों इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी माता दीन कुशवाहा जी ने।

हाँ देखो दोस्तों, जापान सब जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों एक के संगे संगे बिलादरी से अपन ई स्टोरी को सुनना है। आप और कह रही है कि माता दिन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सब जन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुना थे अपन एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देखो साथियों, कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है और इस गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया राकेश कुमार पांडे जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ये कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गया है। सो हमें दो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सावन की तीज आई घनघोर घटा छाई, सावन की तीज आई घनघोर घटा छाई, मेघन

बन की सुन अर्ज रसिक जन की सुन अर्ज रसिक जन की करो चरण बंदनी सुन अर्ज रसिक बन की करो।

वालियां सबरी पंख पसारे कलियां सबरी पंख पसारे ले तन दस मुस क्या गई चबगिया ले तन

कबूल करते हैं भोरा बसत मेघ नचत है मोरा ओ बसत मेघ नचत है भोरा रस रस में

0: साथियों नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का मैं आरजी वर्षा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। जी हाँ श्रोताओं, और देखिए फोन की घंटी भी हमारे बीच में बजने लगी है, तो आइए देखते हैं कि कौन से हमारे पहले आज के श्रोता होंगे। हेलो नमस्कार।
1: परम माननीय वर्षा दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र गोवर्धन रोड मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति आपको कहता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार शारदा प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, आपका आशीर्वाद है, बाकी बिहारी की कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद से रहते हुए रेडियो सुनना शौक है, दीवानगी है जुनून है, और काफी दिनों के पश्चात हमारी प्यारी प्यारी वर्षा दीदी से वार्तालाप हो रही है।
0: जी बिल्कुल, तो कैसा लग रहा है काफी दिनों बाद आपसे बात कर गई?
1: जी बहुत अच्छा लगता है, जब भी आपसे वार्तालाप होती है सुखद अनुभूति होती है, हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है, और मैं तो खुशी के मारे उछल पड़ता हूँ। दीदी आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं, और अभी कुछ टाइम पहले कुछ हमारे साथी आरजे हर्ष आपके बीच में आ रहे थे, क्योंकि एक होता है ना कि थोड़ा सा टाइम दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए, तो वो मौका हम उनको दे रहे थे कि चलो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा एक नई आवाज़ सुनने को मिलेगी, नए लोगों के साथ बात करने का मौका मिलेगा। तो कैसा लगा आपको उनके साथ बात करके?
1: जी हर्ष कुमार जी की आवाज़ बहुत ही प्यारी और बुलंद है, और उनसे वार्तालाप करके भी बहुत ही अच्छा लगा, और हमने अपनी पसंद के गीत सुने। बहुत अच्छे आरजे हैं, और आगे चलकर बहुत अच्छे आरजे के गुण है उनमें।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के, और हमें भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने महसूस किया उनके साथ जुड़ाव एक, तो
1: जी जी बहुत अच्छे ढंग से वार्तालाप करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उनके बातचीत करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा उनसे जुड़कर बातचीत करके। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूं और स्वागत अभिनंदन करता हूं कि यूं ही बार बार हमारे श्रोताओं के बीच में आते रहें और हमसे बातचीत करते रहें।
0: बिल्कुल जरूर, और आगे से आपके चहेते हर्ष ही आपके बीच में आया करेंगे,
1: तो जी जी।
0: चलिए बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आज 30 सितंबर का दिन महान फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी साहब की जन्म जयंती है, उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें सत सत नमन करता हूं, और उनके निर्देशित की हुई फिल्म है मधुमती, और इसमें बहुत ही अच्छा गीत है, मुकेश साहब ने गाया है, सुहाना सफर और ये मौसम है सी, ये गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ रेडियो बुंदेल।

0: राजस्थान और छाया पहाड़।
1: बिल्कुल जरूर शारदा प्रसाद जी, हम आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत जरूर सुनवाएंगे। और बताइए क्या चल रहा है आपके गोवर्धन में?
0: मथुरा में दीदी इस वक्त बहुत ही खुशगवार सुहाना मौसम है और अब तापमान गिर चुका है, हल्की हल्की ठंड रात में होने लगी है और बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम है। और ऐसे सुहाने मौसम में सुहाना सफर, ये मौसम हसीन गीत बहुत अच्छा लगेगा।
1: जरूर जरूर जरूर बिल्कुल, आइए हम और आप मिलकर और हमारे सभी श्रोता मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यार।
0: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार,
1: चैनल पर ही है सुनहरे।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा। हमारे साथ योगेश कुमार जांगड़ जी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? योगेश जांगड़ बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। बताइए कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: क्या सुनना पसंद करेंगे आज?
1: अभी सब खेती बाड़ी काम है अपना। खेती बाड़ी का काम है अपना।
0: क्या लगा है खेतों में?
1: खेत में धान लगाए हैं।
0: धान लगी है, कब कटेगी धान आपकी?
1: अभी तो कम से कम 1.5-2 महीना समय है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना सुनवा देंगे।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अंदाज मूवी का ये गाना है जो 1971 में आई हुई थी। हेमा मालिनी और राजेश खन्ना जी इस मूवी में है और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है। तो आइए योगेश जी, हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: धन्यवाद।
2: जिंदगी एक

0: साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं मोहन सिंह ठाकुर जी। मोहन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमदुरी तालुका, मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे हैं मैडम जी।
0: जी मोहन जी, क्या हाल चाल है आपके और आपकी भैंसों के और आपके कस्बे के?
1: बहुत बहुत बढ़िया है मैडम जी, हमारे भैंसा भी हमारे साथ में है, कार्यक्रम भी सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दो डेढ़ महीना हो गया मैडम जी आपसे बातचीत नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी बिल्कुल, हम भी आप सबको बहुत याद कर रहे थे कि कब हम आपके साथ बात कर पाए। तो चलिए आखिर हम आ ही गए और अब हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम।
1: कोई बात नहीं, देर से क्यों ना हो, शुक्रिया। आइए, आपका आते इंतजार था, वो गीत भी है तो अच्छा होगा आप आ गए।
0: देर लगी आने में तुमको
1: है ना? देर लगी है आने में तुमको,
0: शुक्र अच्छा है कि तुम आए। तो चलिए, तो मोहन जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: फिल्म है चांद का टुकड़ा, श्रीदेवी के ऊपर चित्रगीत हुआ है सलमान खान का, और गीत के बोल है, मैंने देखे लाखों मुखड़े, ना देखा तेरे जैसा मुखड़ा, तू लगे चांद का टुकड़ा।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, चांद का टुकड़ा। चलिए तो हम सुनते हैं चांद का टुकड़ा का ये प्यारा सा गीत जो की श्रीदेवी के ऊपर फिल्माया गया है।
1: थैंक यू, धन्यवाद मैडम जी।
0: जी नमस्कार।

0: हेलो फरमा इसमें, और हमारे साथ हमारे अगले श्रोता भी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: नमस्ते वर्षा मैम, प्रणाम करता हूँ। मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी संतोष भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ रेडियो की ऑन एयर जा रहा था कार्यक्रम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही प्यारी सी आपकी आवाज़ें जब पहुँचती है पूरे दिल दिमाग में छा जाते हैं, पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं पूरे परिवार के सहित।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ये कार्यक्रम सुनते हैं, तो हमें और भी अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल, संयुक्त परिवार इसीलिए होता है ना, कि किसी भी काम को हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं, या फिर किसी पूजा पाठ भी करते हैं, तो सब लोग एकत्रित होते हैं। ऐसा ही रेडियो का प्रसारण होता है। उन्नत तकनीकों के साथ जब रेडियो बुंदेलखंड ओरछा अपनी बुलंद आवाज के साथ लोक गीतों के साथ प्रसारित कार्यक्रमों का निर्माण करता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। समस्त परिवार सम्मिलित हो पाते हैं इस कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो संतोष जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: एक गाना है मैडम, बहुत ही प्यारा सा गाना है, जीना तेरी गली में मूवी का नाम है, बहुत ही प्यारा सा गाना है। इसे प्ले करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। आप प्यार के रंग भरे।
0: आप प्यार के रंग भरे,
1: जी मैडम
0: बिल्कुल। 1991 में ये मूवी आई हुई थी, तो हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। और कुछ कहना चाहेंगे संतोष जी?
1: जी मैम बिल्कुल, बस यही कहना चाहेंगे, सब लोग सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, और अपने स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखें, क्योंकि बदलते मौसम में कई मच्छरजनक रोगों का संक्रमण फैलता है। इसलिए पानी का जो प्रयोग आप प्रयोग कर रहे हैं, उसे छानकर उबालकर गर्म पानी को, अगर गर्म पानी इस्तेमाल करके पिएंगे, तो जो उसमें पानी में जो लार्वा होता है वो भी नष्ट हो जाएगा, और आपको सुरक्षित पानी आपके पीने से आपकी सेहत बराबर बनी रहेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे संदेश के साथ आपने शुरुआत करी है। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।

0: तो दोस्तों अभी अभी मेरे हाथों में आया है माइक और इसी के साथ जिम्मेदारी भी कि आप तक पहुंचाऊं कुछ अच्छी बातें, कुछ नए विचार और थोड़ी सी मुस्कुराहट। नमस्कार बुंदेलखंड, आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 और मैं हूं आपका अपना आरजे और करते हैं सफर की शुरुआत। उम्मीद है पिछले आरजे के साथ आपका सफर रहा होगा शानदार और अब बारी है मेरी आपसे बात करने की। तो आवाज का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, दिल से जुड़ जाइए क्योंकि आज की मुलाकात सिर्फ मेरी और आपकी नहीं बल्कि हम सबकी है। चलिए शुरू करते हैं कुछ नए विचारों के साथ, आज के विचारों के साथ। जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी दिन हमारे मुताबिक होता है तो कभी हमें दिन के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, मुश्किल वक्त आपकी पूरी कहानी नहीं है, बस सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। इसलिए आज अगर कोई परेशानी है तो उसे देखिए, रुकिए मत, एक छोटी सी कोशिश कीजिए, किसी अपने से बात कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं, कभी कभी एक छोटा सा सकारात्मक कदम भी हमें आगे ले जाता है। तो आज की ताजा और विचार बस इतना ही है। हालात चाहे जैसे हों, उम्मीद और कोशिश का साथ मत छोड़िए। आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 और मैं हूं आपका अपना आरजे हर्ष और जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर दीन दयाल कुशवाहा जी, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार भैया, कैसे हैं?
1: नमस्कार भाई, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, और बताइए?
1: बढ़िया है, आनंद उठा रहे हैं आपकी आवाज का।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बताएं क्या हो रहा है?
1: बस लगे हुए हैं खेती में और आपके किसान भी सुन रहे हैं।
0: धन्यवाद। और क्या कटाई वगैरह चल रही क्या?
1: हाँ जी, कटाई चल रही है।
0: ठीक है, चल रही है जी जी जी। तो आज का आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम?
1: बढ़िया है, साफ क्वालिटी आ रही है, बढ़िया
0: जी। धन्यवाद। आज आपकी फरमाइश क्या है, आज क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: वही है ये हनुमान अंश है
0: जी। जी, हनुमान अंश पिक्चर का गाना
1: जी। जी दीदी क्या है नहीं?
0: हाँ दीदी, अभी थोड़ा ब्रेक ले लिया उन्होंने, अब मैं जुड़ चुका हूँ आपसे, बताइएगा।
1: बस अब पुनः प्रसारण की भी आगे ऊपर जाके अब विचार विमर्श करना।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हम आपकी बात का सम्मान रखेंगे, बात करेंगे उधर पे जी। तो हनुमान रंज पिक्चर का हम गाना बजाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश पे। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, हनुमान रंज पिक्चर का सुनील लोधी नीम करोली बाबा का यह गाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया, धन्यवाद। तो चलते हैं गीत की ओर।
1: जी जी जी।

साथियों वापस आ चुके हैं, फिर से जुड़ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। तो दोस्तों जरा सोचिए, हमारी जिंदगी कितनी छोटी छोटी चीजों से बनी होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखना, फिर चाय की चुस्की के साथ दिन की शुरुआत, किसी के लिए जल्दी ऑफिस पहुंचना होता है, किसी को दुकान खोलनी होती है तो कोई अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है, और इन सब भागदौड़ के बीच हम कई बार खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि आखिरी बार आपने अपने मोबाइल के बैठकर अपने परिवार के साथ कितनी देर बात की थी, या फिर कभी सुबह की चाय को बस चाय की तरह बिना किसी जल्दबाजी के बैठकर पिया था। तो आज जरा अपनी दिनचर्या में छोटा सा बदलाव करके देखिए, किसी अपने से दो मिनट दिल खोल कर बात कीजिए, पड़ोसी का हाल पूछिए, घर में किसी की मदद दीजिए, क्योंकि खुशियां हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। कभी कभी कैसे हो पूछना लेना किसी के पूरे दिन को बेहतर बना देता है। तो आप जहां भी हैं, चाहे खेत में, दुकान पर या फिर सफर में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का वो कौन सा छोटा सा पल है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ, और फिर से हम सुनते हैं यही गीत को और बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के साथ। तो चलते हैं गाने की ओर।

0: श्रोताओं एक बार फिर से वापस आ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर। चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो सर जी नमस्कार, मैं ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरविलास तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मैं आपकी दुआ इसी कृपा से बहुत अच्छी तरह से।
0: जी धन्यवाद धन्यवाद। और क्या हो रहा है भाई साहब
1: इस समय? तो बैठे हुए लुत्फ उठा रहे, प्रोग्राम सुन रहे मुझे रेडियो।
0: कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम?
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे गाने लग रहा है।
0: उम्मीद है कि हमारी भी आपको आवाज हमारी समझ आ रही होगी, हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा आपको।
1: और बिल्कुल स्पष्ट प्रसारण चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं है प्रसारण में।
0: धन्यवाद धन्यवाद। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म का नाम है एक फूल दो माली
0: जी।
1: सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।
0: एक फूल दो माली
1: जी
0: जी। और कहाँ, खेतों में बैठे हैं या घर पे?
1: नहीं इस समय घर पे हैं, खेतों में कटाई होने लगी बाजरे की, सुबह जाते समय आ जाते।
0: अच्छा, और सब बढ़िया है?
1: सब दुआएं आपकी। अच्छा,
0: घर में सब स्वस्थ हैं?
1: जी सब लोग स्वस्थ हैं
0: जी। चलिए, और सब बढ़िया है, दुआ है भगवान से, प्रार्थना है सब खुशमय मंगलमय, सब अच्छा सब हो। और हम आपको लेके चलते हैं आपके पसंदीदा गीत की तरफ, तो जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद धन्यवाद।

0: श्रोताओं एक बार फिर से वापस आ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में, जहां पर हमारी नहीं आपकी चलेगी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर। अनूप कुमार राजपूत, ग्राम अपरेका, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार अनूप कुमार जी, कैसे हैं आप और बताइए क्या हालचाल?
1: बढ़िया है। और बैठे थे, हमने कहा भाई साहब से बात कर लिया जाए, बहुत अच्छा लगा, बात हो गई आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और कहाँ पर, घर पर हैं या खेतों में बैठे हैं?
1: घर पर हैं, घर पर।
0: अच्छा,
1: हमारे यहाँ रामलीला शुरू होने जा रहा है कल से।
0: अच्छा,
1: दूसरा दिन है।
0: अच्छा अच्छा, तो आज आपकी फरमाइश क्या है, आज क्या गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन।
0: अच्छा, लाल लाल कुर्ती पे गोरा सा बदन, तो चलिए हम सुनाएंगे आपका आपका पसंदीदा गाना। और सब खैरियत, सब मंगलमय है?
1: सब बढ़िया है। दोस्तों भी नाम ले लें सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: राजू कुमार यादव जी, बलवान चाचा जी और छोटे यादव जी, और आप भी हो इस गाने में शामिल।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड 90.4 को से जुड़ने के लिए। और साथियों, हम लेके चलते हैं आपको आपकी फरमाइश, अनूप कुमार जी की फरमाइश, लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन की तरफ। तो चलते हैं गीत की ओर। धन्यवाद अनूप कुमार जी जुड़ने के लिए।
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं एक बार फिर से वापस आ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम हमारे आपके खास कार्यक्रम है लो फरमाइश में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर। चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार नमस्कार, आपका स्वागत है आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। अपना परिचय दीजिए।
1: जी सर, मैं बलवान सिंह यादव, ग्राम उपरहका, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बोल रहा हूँ।
0: बलवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो हेलो फरमाइश में, और जहाँ होंगी आपकी फरमाइशें, हमारा कुछ नहीं। आज हम आपकी फरमाइशों के गाने बजाएंगे। आप बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर जी, हम तो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं।
0: धन्यवाद, भगवान से यही दुआ है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। बताइए आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आज सुनेंगे सर जी, प्यार के कागज कलम पहली बार सलाम लिखा।
0: अच्छा, तो और रेडियो कब से सुन रहे हैं बलवान जी आप?
1: क्या सर जी,
0: रेडियो कब से जुड़े हुए हैं आप रेडियो बुंदेल?
1: आवाज सर जी कट रहे।
0: हेलो,
1: ये आपकी सुनाई कम से।
0: हेलो, आवाज आ रही है आपको?
1: हेलो,
0: चलिए हम आवाज थोड़ा। हाँ
1: जी जी, अब आ रही है
0: जी, क्लियर हुई है। कैसे हैं आप, ये बोल रहे थे कब से रेडियो बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं?
1: जी सर जी, हम तो बिल्कुल सुन रहे हैं कार्यक्रम और अच्छे हैं
0: जी। आपको हमारी आवाज पसंद आ रही है?
1: जी आवाज कट कट कर आ रही है सर जी।
0: अच्छा, आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। तो हम बढ़ते हैं आपके पसंदीदा फरमाइश की तरफ, प्यार के कागज पे। ये गाना है जिगर पिक्चर का, जो कि 1992 में आई थी, अजय देवगन और करिश्मा कपूर का ये गाना। तो लेके चलते हैं हम आपको इस गीत की ओर। धन्यवाद
1: जी सर जी।

श्रोताओं एक बार फिर से वापस आ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। तो वैसे दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठकर सोचते हैं कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगा और रात होते होते फिर वही देर तक मोबाइल चलाना शुरू। जिंदगी भी ना छोटी छोटी आदतों से ही निकल जाती है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों में मजा है। घर की चाय, दोस्तों की बातें, रास्ते में मिलने वाला कोई अपना, तो आज थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा आराम की

0: कीजिए और अपने लोगों के साथ वक्त जरूर बिताइए। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और कॉलर, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, परिचय दें अपना, आप कौन हैं, कहां से हैं और कैसे हैं?
1: सर जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जी जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो फरमाइशें, जहाँ फरमाइशें आपकी और गाने हमारे। कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में हैं जी, और आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके प्यार के लिए। और बताइए क्या चल रहा है?
1: बस बढ़िया, आनंद है जी, जिंदगी में आनंद ही आनंद है।
0: आनंद ही होना चाहिए, छोटी सी जिंदगी हमारी, उसी में अगर हम टेंशन वगैरह लेते रहे तो क्या ही रहेगा फिर।
1: हाँ जी, फिर तो क्या है जिंदगी, जिंदगी तो वही है जो मजे में गुजरे।
0: जी जी, और बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सर जी, आज फिल्म प्यार ही प्यार का रफी साहब जी का गाया गीत सुनेंगे
0: जी।
1: बोल उसके मैं तरन्न में बताता हूँ
0: जी।
1: देखा है तेरी आँखों में
0: हाँ,
1: प्यार ही प्यार बेशुमार,
0: वाह,
1: पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार,
0: बहुत
1: देखा है तेरी आँखों में।
0: आपने गर्ग जी बड़ा मजा समा में बांध दिया है, और आपकी पसंदीदा गाना प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, तो लेके चलते हैं उस गीत की ओर और मजा और लुत्फ उठाते रहिए हमारे शो का हेलो फरमाइश, और जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ। तो बढ़ते हैं गीत की ओर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से वापस आ चुके हैं आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के हमारे आखिरी कॉलर रामपाल जी। और नमस्कार रामपाल जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे शो हेलो फरमाइश में।
1: जी सर जी, आदरणीय आरजे हर्ष भैया जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम।
0: नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और बताइए कैसे हैं
1: सर जी? बढ़िया है, अपना कृषि का काम चल रहा है समय
0: जी,
1: और आपकी मीठी मीठी बातें सुन रहे हैं कि मोबाइल सुबह जल्दी, ये रात में जल्दी सो जाना चाहिए सुबह
0: जी,
1: क्या
0: जी,
1: क्या क्या नहीं सोचा इसके बारे में? तो बस ये है, हम तो रात में थोड़ा कम मोबाइल का यूज करते हैं।
0: जी जी, बहुत सही, बहुत सही करते हैं आप। जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, ये हमें अपने दिन की दिनचर्या में जोड़ना चाहिए इसको, क्योंकि अभी पता है आपको कि लोग कैसे उल्टा काम करते हैं, रात तक देर तक जागते हैं।
1: तो सर जी, हम एक बात और कहना चाहते हैं, हमारे गांव में रामलीला का आयोजन चल रहा है, आइए, स्वागत है सभी मित्रों का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर आएंगे, आपने बुलाया है तो हम जरूर आएंगे। आज हम आपका फरमाइश जरूर सुनवाएंगे आपको, आपकी फरमाइश क्या है?
1: सर जी, हमारे कुछ मित्र बाहर से आ रहे, तो उन्हीं के पसंद पर एक गीत था कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी रामलीला घर देखने आया।
0: जी, और बताइए कहाँ, घर पे ही बैठे हैं?
1: हाँ नहीं, अपना बगीचा, बगीचे में है।
0: अच्छा, बगीचे में हैं आप?
1: जी जी।
0: और कैसे, क्या घर में सभी लोग कैसे हैं? ठीक हैं, सब अच्छे हैं
1: घर में? तो सभी लोग, मम्मी पत्नी बच्चे सब कुशल मंगल में।
0: चलिए हम आपका फरमाइश का गीत बताते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है कार्यक्रम को समाप्त करने का।
1: जी
0: जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में बस इस खूबसूरत को सफर यहीं करते हैं खत्म। आपकी फरमाइश, आपके पसंदीदा नगमे और आपकी आवाज ही तो इस शो को खास बनाती है। उम्मीद है आज बजाए गए गीतों ने आपकी यादों को थोड़ा और खूबसूरत बनाया होगा, और अगर आज आपकी फरमाइश वाला गाना नहीं बच पाया तो कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश हमारे लिए हमेशा खास है। इसी तरह अपनी फरमाइशें और संदेश हमें भेजते रहिए। मैं हूं आपका अपना आरजे, आपका प्यारा दोस्त, आपसे ले जाता हूं इजाजत। फिर मुलाकात होगी, फिर होगी ढेर सारी बातें, और फिर सुनेंगे आपके दिल की पसंद के नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ। ये था आपका अपना शो हेलो फरमाइश, जहां फरमाइश आपकी और संगीत हमारा। नमस्कार, और जाते जाते ये गीत जरूर सुन के जाइए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आपने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन होवे को समय हो गयो है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष कार्यक्रम आजीविका में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, आजीविका की बात जहाँ पर आती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आजीविका है क्या। लेकिन हमने अपने साथियों को पहले ही बता दिया था कि आजीविका यानी कि हमारी,
1: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, और आप कहना चाह रही हैं कि आप अपनी आय को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं
0: जी,
1: और कैसे हमारे श्रोता साथी, चूंकि बुंदेलखंड में हम आप देख रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे श्रोता साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं अपना स्वयं का धंधा करके।
0: जी हाँ साथियों, जैसे कि हमने आपसे कहा भी था कि दूसरों की मजदूरी करने से अच्छी है कि हम अपना खुद का एक छोटा सा धंधा लगाएं, यानी कि व्यवसाय लगाएं, जिससे हमें दो पैसे की आमदनी हो।
1: बिल्कुल वर्षा जी, और बहुत सारे जब हम नुक्कड़ों के पास मिलने जाते हैं तो बहुत सारी हमें सफल कहानी हमें वहाँ पे मिलती है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे सफल लोग निकल के आ रहे हैं जिन्होंने रेडियो बुंदेलखंड पर आजीविका का कार्यक्रम सुनकर अपने खुद का व्यवसाय को शुरुआत की है। तो ऐसे लोगों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, उनकी सफल कहानियों को बताते हैं। जैसे कि हमने बताया था, पहले ही बताया था, सतीश साहू जिन्होंने अपना दूसरों के यहाँ नौकरी करने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है, तो एक ना एक कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आय को बढ़ाया है, दूसरों की अपेक्षा अपने घर की आय को और बढ़ोतरी की है।
0: जी हाँ, जैसा कि साथियों उन्होंने बताया था कि हम जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे, वो ऐसे में उन्हें क्या क्या परेशानी होती थी, एक तो टाइम से नहीं पहुँचते थे, घर टाइम से नहीं आ पाते थे, और दूसरी चीज उन्हें तनख्वाह जो मिलती थी, जो पैसा महीने का दिया जाता था, वो समय पे नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, हम कोई भी काम अगर करते हैं तो अगर वो पैसा हमें समय पे ना मिले तो किसी काम का नहीं होता है हमारे।
1: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, जब तक हमें स्वयं का व्यवसाय, चाहे वो हम 2 घंटे अपने लिए क्यों नहीं दें, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम आप देखते हैं कि 24 घंटे में से 12 घंटे दूसरों के मजदूरी करने के बाद हमें तनख्वाह 100 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए इस तरीके का देते हैं। हम उनके लिए जब मेहनत करते हैं, क्यों ना हम अपने लिए, खुद के लिए इतनी सारी मेहनत करें कि हम सफलता को हम चलते चले जाएंगे और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोग हमें नाम से पहचानेंगे।
0: बिल्कुल, और सफल जब ही होंगे जब आप सोच लेंगे कि हमें करना क्या है आखिर, और जब आप करने का निश्चय कर लेंगे तो फिर हमें आप जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
1: बिल्कुल वर्षा जी, और इस कार्यक्रम में हम दोस्तों को बात कराएंगे हीरालाल कोरी जी से, जिनसे बात करेंगे कि उन्होंने तौलिया का व्यवसाय, चूंकि बहुत सारे हमारे श्रोता साथी सोचते होंगे कि कुछ जातिगत जो व्यवसाय रहते हैं वो उनकी ही जाति के लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी जाति बात से हटकर उस व्यवसाय को सोचना चाहिए।
0: यानी कि आपके कहने का मतलब है मनीष जी कि कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि मटका बनाना, तौलिया बनाना, ये बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये इसी जाति के लोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको उस काम को करने में रुचि है तो आप बिल्कुल ये सोच हटा दीजिए जातिवाद की कि ये यही जाति का करेगा, हम भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अगर एक मटका बनाना जानते हैं और हम कुम्हार नहीं हैं, तो क्या हम अपनी रुचि को आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या हम उससे 2 पैसे नहीं कमा सकते हैं? क्या हम अपनी रुचि को आगे ले जाकर लोगों को ये बताएं कि जातिवाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल वर्षा जी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तौलिया का व्यवसाय, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि मऊ रानीपुर में सबसे ज्यादा तौलिया का व्यवसाय होता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर अपने आसपास में तो निवाड़ी में बहुत ज्यादा तौलिया का व्यवसाय चलता है। तो ऐसे में किस तरीके से हमारे युवा साथी इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो इस चर्चा को सुनने से पहले हम एक गीत के साथ हम आपको मनोरंजन कराते हैं, और गीत के बाद आपको सीधा हम निवाड़ी ले चलेंगे और जहां पर हीरालाल जी हमसे बात करने के लिए तैयार है। तो आइए इसी क्रम में एक हम गीत को सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और दोस्तों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना जिसे गा रहे थे दयाशंकर और उनके साथी।
1: जी हाँ, अब हम आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि मनोरंजन के बाद हम आपको सीधा ले चलेंगे निवाड़ी हीरा लाल जी के पास, जो कि आपको बताएंगे कि तौलिए का व्यवसाय किस तरह से किया जाता है और क्या क्या समस्या उनको आती है और क्या क्या सावधानी इसको करने में रखनी चाहिए।
0: तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: अपना परिचय दें पहले।
2: हीरा लाल पूरी कालपुरा निवाड़ी।
1: अच्छा, तो हीरा लाल जी आप क्या करते हैं?
2: हम तौलिया के काम करते हैं, क्या मशीनें लगाई हुई हैं पावर लूम।
1: अच्छा, तो जैसे शुरुआत बात करें अगर, तो आप तौलिया कैसे, कहाँ से इसका माल लाते हैं, कच्चा माल कहाँ से लाते?
2: कच्चा माल आता हमारा रानीपुर से।
1: अच्छा, कैसा किस हिसाब से लाते हैं?
2: जैसे धागा है वो तो 100 रुपए किलो भी आता है, 150 भी आता है। अच्छा। हर प्रकार का धागा खरीद के फिर बेलन भी भरवाते हैं।
1: अच्छा, तो इन सब में कितना खर्चा आ जाता है?
2: आप बेलन भराई जैसे 5,000 के आसपास तो बेलन भर जाता है, और फिर धागा उसके बुनने के लिए, माल बनाने के लिए वो अलग खरीदना पड़ता है।
1: तो ये सारा सामान आपको वहीं से
2: रानीपुर मिल जाता है।
1: अच्छा, फिर वहाँ से लाने में कैसा क्या
2: लाते क्या है? जैसे इधर से गाड़ी जाती है, गाड़ी में आता है माल,
1: गाड़ी में आता है। फिर वो धागा यहाँ लाने के बाद आप क्या करते हैं?
2: उसका धागा ले जाने के बाद पावर लूम पे जैसे बेलन रख दिया और धागा हाथ से गाड़ी भरती है, उसके बाद बस पावर लूम पे काम करो, कपड़ा बनने लगता है।
1: कपड़ा बने, कितने लोगों को आप लगाए हुए हैं?
2: हम जैसे एक मजदूर लगाए हुए, एक खुद करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं।
1: अच्छा, वैसे अगर देखा जाए आप नहीं करते तो कितने लोग की जरूरत पड़ती है?
2: जैसे 2 लोगों की पड़ेगी, जैसे 3 पावर लूम लगाए हुए हैं, घर का धंधा है ये।
1: अच्छा,
2: ज्यादा तो लगाए नहीं हुए हैं, जैसे ज्यादा लगाओ मशीन है तो ज्यादा मजदूर लगेगा, जैसे 3 पावर लूम लगी हुई है तो 2 मजदूर चल जाते हैं उसमें।
1: तो एक दिन में कितना आप बना लेते हैं तौलिया की बात करें तो?
2: एक दिन में तौलिया बन जाती है 40, एक मशीन पे।
1: एक मशीन पे 40
2: 40 तौलिया बनती है,
1: पूरी कंप्लीट हो जाती है?
2: कंप्लीट हो जाती है।
1: अच्छा, और एक महीने में?
2: एक महीने में आप इसका हिसाब लगा लो, जैसे 40 लगी एक दिन में तो थोड़ा कम प्रोडक्शन हो जाएगा। ये तो पहले का है, थोड़ा कभी लाइट भी नहीं रहे, कहीं कुछ वजह है, हिसाब से प्रोडक्शन कम नहीं हो सकता।
1: और जो मशीन आप लगाए हैं उसमें लाइट का कैसा क्या है, कनेक्शन आपने करवाया?
2: हमारा कनेक्शन है 3 फेज का, कनेक्शन कराई। हाँ,
1: तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता है? जैसे आप कनेक्शन भी करें वो भी बिल भरना पड़ता है?
2: हाँ, क्यों नहीं मिलता, वो तो इतना तो मिल ही जाता है कि परिवार चलाने युग।
1: अच्छा, अपना परिवार चलाने युग। वो जो व्यक्ति आपके यहाँ लगा हुआ है मजदूर,
2: उसका भी परिवार चल जाता है।
1: कितना उसको देते?
2: उसको जैसे उसका हो जाता है 6 दिन में 1,500 के आसपास का।
1: अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे तौलिया बनाने से पहले?
2: तौलिया बनाने के से पहले क्या, जैसे पहले तो हम जैसे कोई दुकान टेलरिंग की खोले थे मार्केट में, सिलाई का काम करते थे। फिर दिमाग में आया कि पावर लूम लगा लो घर में, तो पावर लूम लगा लिए।
1: अच्छा, तो मशीन आप जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे? जी पावर लूम,
2: जी मशीन ऐसा है कि जैसे इधर ही इधर बिकती रहती है, कोई नहीं करता धंधा, कोई कुछ और बदल देता है, इधर ही इधर मशीनें मिल जाती हैं।
1: अच्छा, नहीं तो अगर जैसे किसी को खरीदना हो जी मशीनें तो कहाँ से?
2: तो ये टांडा वगैरह जाना पड़ेगा, टांडा में है।
1: ये कोई समूह के द्वारा मिलती है या फिर?
2: हाँ, ये समूह के द्वारा भी मिलती है, अभी रानीपुर में जो है यूपी में।
1: हाँ,
2: आपको सरकार ने दी है 64 की मशीनें बड़ी बड़ी, और मकान बनाने के लिए लगाने के लिए व्यवस्था पैसा दिया है, 2.5-3 लाख रुपया दिया है। समूह द्वारा भी मिलता है, सरकार भी दे देती है।
1: तो समूह द्वारा अगर कोई लगाना चाहे तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे?
2: हाँ, समूह द्वारा
1: सरकार पैसा देती
2: है। हाँ, उससे ज्यादा मशीनें मिल जाएंगी, उसको पूंजी भी मिल जाएगी, वो घर का बिजनेस करने लगेगा।
1: अच्छा, अब आपकी मार्केटिंग की बात अगर करें तो आपका बाजार कहाँ होता है, आप कैसे इसको बाजार में सेल करते
2: हैं? हम लोगों की मार्केट ऐसा है कि व्यापारी बने हुए हैं बाहर के, तेजरी से गांठे पैक होकर चली जाती है, तैयार होके माल
1: पूरी कंप्लीट या फिर?
2: पूरी कंप्लीट, मैं फ्रेश फिनिशिंग होके तैयार। अच्छा, पक्की बन जाती है। अच्छा, बाहर जाता है, राजस्थान जाता है, भोपाल चला जाए, बहुत जगह जाता माल तो।
1: अच्छा, तो आपको महीने में कितना इसमें प्रॉफिट हो जाता है?
2: महीने में वो ये 15-20 हज़ार रुपए की कमाई पर बाल चलाने लगभग।
1: अच्छा, इसके अलावा आप और क्या करते हैं?
2: बस इसके अलावा क्या है, वही काम है।
1: अच्छा, कितने घंटे आप देते हैं इस काम में?
2: इसमें पूरा लगा रहते हैं वो तो, 10 घंटे करीब काम देना पड़ता है।
1: जैसे सुबह से उठे तो सीधा?
2: बस उसी में, वही काम है और है क्या।
1: अच्छा, अगर कोई और लगाना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते, उसको क्या क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए?
2: और कोई लगाना चाहे तो सावधानी क्या, उसको पावर लूम चलाना सीखना पड़ेगा, जैसे नहीं जानता है तो उसको सभी सीखना पड़ेगा, धागे का काम है, तैयारी का काम है।
1: आपकी बात अगर करें तो आपने कहाँ से सीखा, कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी?
2: ट्रेनिंग क्या, हम इस काम को नहीं जानते थे, जैसे पावर लूम लगा लिए, कारीगर लोग कर रहे हैं काम, सुधारना भी नहीं जानते थे मशीन, तो वो धीरे धीरे कारीगर लोग चलाए, हम भी सीख गए।
1: बस पहले कारीगर लगाया,
2: कारीगर लगाया, उनने किया काम, जैसे बिगड़ गई मशीन तो मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री को देखा ये किस प्रकार का उधारता है, तो अपन देखते देखते अपन भी होशियार हो गए।
1: अच्छा, जैसे कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें परेशानी आती है, कोई ना कोई दिक्कतें आती है, तो आपको ऐसी क्या क्या परेशानी?

0: बहुत सी परेशानियां आई थी हमको, जैसे उसमें कुछ जानती नहीं थी, थोड़ा भी कुछ बिगड़ जाए, थोड़ा चमड़ा टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो मिस्त्री को पकड़ते थे, उसको पैसा देना पड़ता था।
1: अच्छा, और आप अगर बिगड़ जाए तो?
0: आप तो खुद कर लेते हैं, सब
1: खुद कर लेते हैं। अच्छा, सब समझ हो गई है,
0: सब समझ हो गई है।
1: अच्छा, इसमें जगह कितनी की जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर कोई लगाना चाहे तो उसको जगह की कितनी जरूरत पड़ेगी?
0: जगह के लिए शायद कोई दो मशीन लगाना पड़े या तीन लगाए छह लगाए, उस हिसाब से जगह लगती है। जैसे 12x12 के कमरे में दो मशीनें लगती है, समझ लो आप, और ज्यादा मशीनें तो उस हिसाब से जगह चाहिए।
1: तो अभी आप दो मशीनें लगाए?
0: हम तीन लगाए हुए।
1: और अगर कोई खुले माल में आपसे लेना चाहे, जैसे एक तौलिया दो या तीन चार पाँच, ऐसे में आप बेचते हैं?
0: दे देते हैं।
1: अच्छा, कितने की एक तौलिया जाती है?
0: जैसे तौलिया कपे के ऊपर है, 12 रुपए की भी, 15 की भी है, 35 की भी है, ये तो वैरायटी अलग अलग
1: है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आपने इस बातचीत को सुना और जो हीरा लाल जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं तौलिया का व्यवसाय करके, तो हमें भी इस व्यवसाय को अपनाना चाहिए और अपनी आय को बढ़ाना चाहिए।
1: हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तौलिये का ही व्यवसाय करना चाहिए। इससे मतलब ये होता है कि आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आपको किसी भी काम को करने में अच्छी लगन हो, अच्छी पकड़ हो, आप सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और वो काम खुद का होना चाहिए, तो आप वो जरूर करें और हो सकता है कि उसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, और मदद करने के लिए चूंकि आपको लगता है कि हमें परेशानी आ रही है ट्रेनिंग्स के लिए, तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी ऐसी संस्था हैं जो ट्रेनिंग्स इन सारे व्यवसायों के लिए कराती है, तो आप जुड़िएगा हमसे और बात करिएगा और इस व्यवसाय संबंधी बातचीत करने के लिए हम आपको फोन नंबर दे देते हैं। फोन नंबर है हमारा
2: 9425147126।
1: श्रोता साथियों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि रेडियो बुंदेलखंड बार बार आजीविका से जुड़ी हुई बातों पर क्यों जोर दे रहा है, तो आपको बता दें कि हम देख रहे हैं कि जब हम फील्ड पर जाते हैं नुक्कड़ नाटक या नेहरू कास्टिंग के माध्यम से, तो देख रहे हैं कि अपने गाँव में जितनी जनसंख्या पहले थी अब वो नहीं है। हुआ क्या है कि वो लोग पलायन कर गए हैं, यानी कि अपना भरण पोषण करने के लिए दिल्ली चले गए हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा, आखिर हम लोग कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें बाहर जाने से कितनी समस्या होती है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, और जब हमारे बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे तो उन्हें कितनी बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आज मजदूरी कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे बच्चे भी आगे चलकर मजदूरी ही करें, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो हो सकता है वो कुछ अच्छी नौकरी करें या फिर अपना खुद का धंधा करें या रोजगार लगाएं कुछ भी। तो इसीलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आप अपना खुद का व्यवसाय लगाइए और अपनी आजीविका को अच्छे से चलाइए।
0: बिल्कुल वर्षा जी, आप एक बात हम इसमें और जोड़ेंगे, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जब हम दूसरों की मजदूरी करने के लिए यानी यहाँ से हम पलायन करते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो शिक्षा पर, उनकी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि बच्चों पर सबसे खासा असर पड़ता है। लोग सोचते हैं कि मजदूरी का बेटा मजदूरी करेगा, यानी मजदूर करने वाला व्यक्ति का बेटा मजदूरी ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मजदूर करने वाले का बेटा इंजीनियर बन सकता है, मजदूर करने वाले का बेटा डॉक्टर बन सकता है, सारे जो रहते हैं मजदूर करने वाले लोग आगे चलकर बड़ा अपना, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और अपने पढ़ाई का स्तर जो रहता है, हम और आप देखते हैं कि पढ़ाई का स्तर जो, अब हम बुंदेलखंड को देखें तो बच्चे जो मजदूर करने के लिए चले जाते हैं साथ में, तो उनका पढ़ाई का स्तर बहुत ही कम हो जाता है, तो अशिक्षित होने के कारण उनको बहुत सारी समस्या आती है।
1: जी हाँ साथियों, तो इसीलिए हमारी बात पर गौर फरमाइएगा कि हम जो आजीविका कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, इस पर हमें जरूर अपने सुझाव और फीडबैक दें।
0: बिल्कुल, और इसके लिए आप पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम और छतगेला के पास ओरछा।
1: साथियों, अब हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय होता है, लेकिन आप अपने सुझाव, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हो या फिर आपने भी इससे कुछ सीख ली हो, अपने जीवन में थोड़ा सा भी अगर बदलाव किया है इस कार्यक्रम को सुनने के बाद, तो हमें जरूर बताएं, हम आपके पास आएंगे और आपकी कहानी सबको सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल, तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: कार्यक्रम मुझे हक है कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 और हमारे साथ हैं हमारे रेडियो साथी
1: मनीष और साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मुझे हक है। क्योंकि मुझे हक कार्यक्रम जैसा ही नाम है वैसा ही इसका काम है, क्योंकि मुझे हक है, मुझे हक है जानने का,
0: मुझे हक है पहचानने का और मुझे हक है जो मेरे लिए योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ लेने का।
1: बिल्कुल वर्षा और सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम मुझे हक में बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और श्रोता साथियों को फिर से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारे साथियों के साथ, क्योंकि काफी दिनों से मुझे हक कार्यक्रम में हम योजना पर बात नहीं कर रहे थे। और हम आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवा साथी, अब उनके मन में एक ही सवाल चलता है कि हमें साहब योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल, और देखिए होता क्या है, सरकार हम सबके लिए, हम बेरोजगार साथियों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती रहती है हमेशा समय समय पर, जिनका लाभ हमें मिल जाए और जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा कुटीर उद्योग ही टाइप कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हम अपना आय चला सके।
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि हम और आप ये देखते हैं कि जब आजीविका की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो ये सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लग जाता है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे रोजगार हम करेंगे। और साथ में ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है हमारे साथियों के मन में चलती है कि क्या काश हमारा ये रोजगार हम जो लगा रहे हैं, जो हम व्यवसाय डालने जा रहे हैं, वो व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन इसके लिए एक उपाय है, हमारे पास उपाय है, क्योंकि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जा रहे हैं। यदि आपके पास रुचि है, यदि आपके पास हुनर है, आप ये देखते हैं कि हम किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं और अपनी हुनर बताते हैं कि साहब हमें ये काम बहुत अच्छा आता है, चाहे वो ऑटो पार्ट्स की दुकान हो, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान हो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग रहते हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, उसके कारीगर आप स्वयं रहते हैं। लेकिन समस्या आती है कि हम अपना स्वयं का व्यवसाय नहीं डाल पाते, हम दूसरों के लिए काम करते हैं।
0: अरे अरे मनीष जी, अभी आप सारी बातें बता देंगे तो हमारे श्रोता साथियों को पता कैसे चलेगा कि आज इस मुझे हक है कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के लिए क्या लेकर आए हैं। तो पहले हम बता देना चाहते हैं कि आज श्रोताओं मुझे हक है कार्यक्रम में हमें जानने का हक है कि हम सुनेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरी जानकारी कि किस तरह से ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और कैसे हमारे बेरोजगार साथी जो हैं वो इस योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं।
1: लेकिन वर्षा, हमें लगता है कि एक गीत संगीत हो जाए।
0: अरे मनीष जी, आप बस सुनते ही नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। हम वही बताने वाले हैं कि हम जानकारी लेंगे, साथ में कुछ गीतों के साथ मनोरंजन भी करेंगे और कुछ हम और आप मिलके अपने श्रोताओं को कुछ और नई जानकारी भी देंगे ताकि हमारे साथी कहीं भटके ना और इस योजना तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जो बात आप कर रहे थे कि यहाँ पर एक गीत सुनना है, बिल्कुल चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक बढ़िया सा लोक गीत।
2: लड़का बारी बदा मांग रहे सुन सुन के

अपना रेडियो अपनी बातें। रेडियो बुंदेलखंड पर श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये मधुर सा गीत और जिसे गा रहे थे पन्ना लाल अहिरवार और उनके साथी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम जो योजना के बारे में जानने वाले हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, उस योजना के बारे में जानते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा मनीष जी के पास।

0: इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं उद्योग विभाग के अधिकारी। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि उद्योग विभाग की ओर से कौन सी संचालित योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरीके से उसका लाभ लिया जाता है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिएगा।
1: जी, मेरा नाम हितेश ठाकड़ है और मैं उद्योग विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ टीकमगढ़ में।
0: तो सर उद्योग विभाग की तरफ से कौन सी योजना संचालित की जा रही है?
1: वर्तमान समय में शासन की चार योजनाएं हैं जो उद्योग विभाग संचालित की जाती हैं।
0: जी,
1: चारों के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। पहली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।
0: जी,
1: इसके अंतर्गत आपको 18 से 45 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए।
0: जी,
1: इसके अलावा आपको न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए।
0: जी,
1: ठीक है। इसमें राशि की बात करें तो इसमें 50,000 से लेकर 10,00,000 तक की राशि आपको आपके व्यवसाय सेवा तथा उद्योग के पर्पज से आपको दी जाएगी। इसके अलावा हमारे आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः ऑनलाइन है। आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना है तथा इसका प्रिंट आउट हमारे जिला कार्यालय टीकमगढ़ में आपको जमा करेंगे।
0: इसको ये मध्य प्रदेश में का मूल निवासी।
1: जी, इसके लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपके पास 5वीं की मांग सूची होनी चाहिए।
0: जी,
1: निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
0: जी,
1: जाति प्रमाण पत्र अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त एक आवेदनकर्ता के पास अपने पास होने चाहिए।
0: अच्छा, उस फॉर्म में जब फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है कि कार्य योजना किस तरीके की आपको पूछा जाता
1: है? जी, इसमें क्या है, एक कार्य योजना का प्रारूप होता है, दो पन्ने का ये प्रारूप है। वो आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि आवेदक द्वारा ये भरी जाए, लेकिन किंतु कई आवेदक इसे नहीं भर पाते, इसलिए ये कार्य योजना हम अपने विभाग में अपने ऑफिस में भरते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कार्य योजना ना भर पाए तो आप हमारे विभाग में संपर्क करके पहले वो कार्य योजना बनवाएं, फिर ऑनलाइन उसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी आवेदन में, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका पता, और आप किस बैंक के लिए आवेदन कर रहे हो उसको आपको आवेदन में ऑनलाइन भरना पड़ेगा, जिससे जब आप आवेदन करोगे और जमा करोगे तो हम अपने विभाग से उसी बैंक के लिए स्वीकृत करके आपका आवेदन प्रेषित करेंगे।
0: अच्छा, ये सर उद्योग विभाग जब स्वीकृत भेजता है अपना डेटा तो कौन कौन से बैंकों को जाता है?
1: जी, ये इसमें सभी प्रकार की राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है, वो भी शामिल हैं। लेकिन इसमें एक क्लॉज रहता है कि CGTMSE करके जो प्राइवेट बैंक इसमें कवर नहीं होती हैं, इसीलिए प्राइवेट बैंक आमतौर पर ये केस नहीं करती हैं। जबकि जो शासन की जो सभी समस्त बैंक है, ग्रामीण बैंक से लेके कैनरा बैंक, SBI बैंक, जो भी समस्त शासकीय बैंक है, वो सब इस योजना के अंतर्गत अपने अपने काम करती हैं।
0: अच्छा, तो ये चीज और बताइए, जैसे उसका आवेदन भर गया है, उसने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है, तो कितने दिन बाद उनको ये राशि प्रदान हो जाएगी, क्या रहे इसकी प्रक्रिया क्या रहती है?
1: जी, जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है और जो भी योजना हमारे विभाग से चल रही है, वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम

0: उसका निवारण किया जाएगा
1: जी। और इसके बाद जब बैंक के पास जाता है तो बैंक कितने दिन में उसको स्वीकृत कर देगा?
0: देखिए, बैंक के लिए एक डेडलाइन तो फिक्स नहीं है
1: जी,
0: लेकिन आमतौर पर बैंक अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के पश्चात ये कर देता है। अब कितना वो टाइम लेते हैं वो हर बैंक का अलग अलग रहता है, इसलिए इसकी जानकारी बैंक वाले ही बता पाएंगे।
1: अच्छा, इसमें ये रहता होगा कि आवेदक जो है यदि बैंक से वो कर्ज लिए हो तो क्या उसकी स्वीकृति हो जाएगी?
0: जी जी बिल्कुल नहीं, आवेदक को बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उसी बैंक का नहीं किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपको लोन दिया जाएगा उससे पहले आपका एक नोटिस लगेगा कि आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, तो आवेदक अगर डिफॉल्टर है तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा, वो अपात्र हो जाता है।
1: और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होकर बैंक भी स्वीकृत कर देता है तो क्या डायरेक्टली उसके पैसा एक खाते में जाता है कि जो वो सामान खरीदना चाहता है उसके?
0: जी, इसके बारे में भी हमारे विभाग ने प्रावधान किया है, कुछ अनियमितताओं को लेकर इसका एक समाधान ढूंढा गया है कि जब आप कोटेशन लगाओगे, जैसे मान के चलिए आप जनरल स्टोर खोल रहे हो, उसके लिए आपने सामान लाओगे कहीं ना कहीं से, तो वहां का आप कोटेशन लगाओगे, बिल लगाओगे, तो जब बैंक में वो बिल जमा करोगे आप, तब आपका ऋण स्वीकृत हो जाएगा। जब वितरण की बारी आएगी तो जो वितरण की राशि होगी वो सामने वाले के खाते में जाएगी जहां आपने कोटेशन लगाया है। आपको एक सेल लेटर मिलेगा जिससे आप उस सेल लेटर को वहां लेके जाइए और वो आपको सामान दे देंगे उतने मूल्य का।
1: अच्छा,
0: तो ये इसकी प्रक्रिया रहती है, आपको नगद राशि उतने सामान की नहीं मिलेगी। आपको जो अन्य खर्चे हैं जैसे काउंटर फर्नीचर या जो आपका सीसी लिमिट चलता बैंक में, उसके लिए आपको नगद राशि मिलेगी, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा सामने वाले के अकाउंट में जाएगा।
1: अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे किसी ने उद्योग विभाग से अपना लोन पास करवाया है और बैंक ने भी लोन पास कर दिया है, तो क्या उसको पूरी राशि जमा करनी पड़ेगी कि कुछ उद्योग विभाग उसमें छूट देगा?
0: जी जी, इसके लिए देखो शासन ने जो हमारे जो बेरोजगार युवा भाई है उनको प्रोत्साहन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें हर योजना में अलग अलग चार स्कीमें, मैं उसका अलग अलग बताऊंगा। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात करें तो इसमें जो सामान्य पुरुष है उसको 15%, इसके अलावा वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, मान के लिए एससी है, एसटी है, ओबीसी है, विकलांग है, अल्पसंख्यक है और महिला है, इन सभी को 30% परियोजना लागत का 30% शासन की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी दी जाती है। आपको जो राशि आपकी है उसमें से 30% घटा के आपको बाकी रुपए बैंक को जमा करना है, जो 30% वो आपको प्रोत्साहन रूप आपके कार्य के लिए दी जाती है।
1: अच्छा अच्छा, और सर ये कितने दिन में उसको जमा करना पड़ता
0: है? देखिए, ये तो ये बैंक का मैटर है, लेकिन इसमें फिर भी मैं बता देता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसमें अधिकतम 7 वर्ष रहता है और मिनिमम 6 माह रहता है। इस बीच की अवधि में बैंक आपकी किस्त बनाएगी आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको पूछ के, तो अधिकतम 7 वर्ष रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता, 7 वर्ष के अंदर आपको चुकाना है।
1: और यदि बैंक से वो लोन लेकर वो फेल हो जाता है अपने उद्योग लगाने के बाद, तो क्या उसकी क्या हो रहा है?
0: देखिए, फेल होने पर पहली बात तो जो आप जिसके लिए उद्योग लगा रहे हो पर या जिसके लिए आप मुझे ऋण ले रहे हो वही उसकी गारंटी होता है पहली बात, तो अगर आप फेल होते तो वही जब्त होगा सबसे पहले। आपने दुकान लगाई तो उसका सामान, कोई भी चीज आप लगाई तो उसका सामान, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब आप फेल होते हो या डिफॉल्टर होते हो, इसके लिए भारत शासन की एक स्कीम है जिसे सीजीटीएमएसई करके बोलते हैं, उसमें क्या है सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें रजिस्टर होती हैं। मान के चलो अनफॉर्चुनेटली कोई उद्यमी डिफॉल्टर हो जाता है तो बैंक अपना जो डिफॉल्ट किया हुआ पैसा है वो वहां से कवर करती है। ये ऐसा प्रावधान किया गया है।
1: अच्छा अच्छा जी, और यदि किस्त उसकी चूक जाती है तो क्या रहता है?
0: किस्त चूकने पर पेनल्टी लगती है
1: जी,
0: उनका कुछ परसेंटेज रहता है बैंक का, 0.2 या 0.5 जो परसेंट रहता है, इस हिसाब से पेनल्टी लगती है।
1: अच्छा अच्छा, तो इसमें उद्योग विभाग का कोई रोल नहीं रहता?
0: जी नहीं, उद्योग विभाग का रोल यहाँ तक सीमित है कि वो आप जब आवेदन करोगे आपके आवेदन को स्वीकृत करेगा, बैंक प्रेषित करेगा, अगर बैंक आपका लोन वितरित कर देता है तो आपकी जो एलिजिबल मार्जिन मनी है जो सब्सिडी जैसे बोलते हैं वो हम रिलीज कर देंगे।
1: अच्छा जी, इसमें कोई गारंटर रहता है?
0: जी, गारंटर देखो बेसिकली शासन की जो गाइडलाइन है उसमें गारंटर का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ बैंकों के हमारे संज्ञान में आया है कि उनके कुछ इंटरनल सर्कुलर हैं जिसके तहत उन्हें गारंटर की आवश्यकता होती है, तो ये हर बैंक का अलग अलग रहता है, तो ये वही अच्छे से बता पाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: में यहाँ वहाँ भटकते हैं। आप घर पे ही अपना स्वरोजगार लगा सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी में, बहुत ही कम लागत में ऐसे ऐसे टिकाऊ रोजगार हैं, ऐसे ऐसे सस्ते रोजगार हैं जिसको हम घर बैठे कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सवाल आता है कि अब पैसे कहाँ से, तो धाकड़ जी ने हमारे बता भी दिया है कि जो पैसे वो उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाती है, वो उद्योग विभाग स्वीकृत कर देता है आपके आपके परियोजना को और वो परियोजना बैंक में जाकर स्वीकृत हो जाती है और आपको एक आसान तरीके से ऋण उपलब्ध हो जाता है और आप अपने स्वयं का जो आपने सोच रखा है उस व्यवसाय को करने में आपको मदद मिलती है।
1: मनीष जी, यहाँ पर हमारे जो श्रोता साथी हैं थोड़ा सा नर्वस तब हो जाते हैं जब वो कहीं प्रयास करते हैं और वो प्रयास सफल नहीं होता है। तो अभी जैसा कि धाकड़ जी ने बताया है कि कई बार क्या होता है कि फाइल यहाँ वहाँ हो जाती है और हम फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो जिस चीज को कहते हैं कि बार बार उस चीज के बारे में हम पूछते रहें। मान लीजिए अगर किसी को हमने पैसा दिया है या कोई चीज हमने दी है तो हम उससे बार बार पूछते रहते ना कि भैया वो चीज ऐसी थी, वो कहाँ गई, या फिर हमने आपको वो पैसा दिया था वो अब कब लौट आ रहे हैं, क्या कैसा। तो उस चीज की स्थिति जानने के लिए हम उससे बार बार कांटेक्ट करते हैं, उसको फोन करते हैं या जाते हैं उसके पास। तो ऐसे ही जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं तो हमें उसका फॉलो अप जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप गए, आपने इस योजना की जानकारी ली, इसका फॉर्म डाला और बैंक में या उद्योग विभाग में जाके आपने सबमिट किया और उसके बाद आके आप फ्री होके घर पे बैठ गए। अब आप सोचेंगे कि उद्योग विभाग वाले खुद आएंगे और वो हमसे पूछेंगे कि भैया आपने किसके लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं है, आप भी एक दो बार वहां पे जाइए और पूछिए उनसे कि साहब हमने जो फाइल दी थी उसका क्या हुआ, कब तक आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके एक तो क्या होगा कि उद्योग विभाग के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे क्योंकि जान पहचान बढ़ेगी और जान पहचान बढ़ने से आसानी से लोग आपको पहचानने लगेंगे। तो आपको कहीं से भी कैसे भी करके किसी न किसी योजना से जोड़ दिया जाता है तो आपका काम आसान हो जाएगा।
0: एक हम अपने श्रोता साथियों को सलाह और देना चाहते हैं, जहां तक कि मेरा अनुभव कहता है कि हमारे श्रोता साथी अपने मन में जो आपकी इच्छा है कि हमें इस व्यवसाय को करना है उसके लिए आप जो सरकार द्वारा जैसे हमने स्वरोजगार योजना के बारे में बताया है उसकी सबसे पहले वहां जाकर संबंधित अधिकारी के पास पहले जो गाइडलाइन रहती है उसको पढ़ लेना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि बहुत सारे साथी सोचते हैं कि सभी को लोन उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। उसके लिए भी कुछ कैटेगरी बनाई जाती है जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कितना पैसा, कितना छूट, ये सारी परियोजना में लिखा रहता है और उसी हिसाब से आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ऋण उपलब्ध हो जाए, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमें पढ़ लिख कर पूर्ण रूप से तैयार होकर तब हमें एक डिमांड करनी चाहिए, तब हमें मांग करनी चाहिए, तब हमें आसान तरीके से वो ऋण आपको उपलब्ध हो जाएगा और आसान तरीके से आप अपने व्यवसाय लगाने में आप सफल होंगे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा है, इस बात पे हम भी थोड़ा सा और कहना चाहेंगे क्योंकि कई बार होता है जब हम बैंकों में जाते हैं तो बिना पढ़े ही हम किसी भी कागज पे दस्तखत कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ने में समय व्यस्त करेंगे तो वो हमारा समय बेकार जाएगा या हम कहीं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी हम ऐसी किसी योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ते हैं, तो उस योजना के बारे में आपको एक एक जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है। आप उस योजना को अच्छी तरीके से पढ़िए कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते हैं तो फिर आपका समय वहां पे बेकार जाने वाला है। तो इसलिए पहले से ही आप उसकी जानकारी ले लें ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो। और जहां तक बात होती है पैसे की, तो मनीष जी देखिए, जब हम एक बार ठान लेते हैं कि हमें ये व्यवसाय या कुटीर उद्योग कुछ भी खोलना है, अपना स्वयं का व्यवसाय करना है, पैसा सिर्फ एक माध्यम होता है ना कि रुकावट बनता है। तो आप सारी जो तालमेल होती है, जो भी और व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, उनको एक साथ रखिए। पहले पैसा एक बाद की चीज होता है, पैसा आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, किसी ना किसी योजना से आपको जोड़ ही दिया जाएगा अगर आपके पास लगन अच्छी है, मेहनत अच्छी है, आप वाकई में चाहते हैं कि आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जो चीज, वो होती है प्लानिंग, मार्केटिंग और आपका लगन, आप कितनी लगन से उस काम को करने में लग रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और इसी के साथ क्योंकि अब हमारे घड़ी

0: श्रोताओं, अभी आपने जो जानकारी सुनी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जानकारी आप सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है?
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि ये जानकारी उन युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी है जो रोजगार की तलाश

0: हमारा कार्यक्रम अब हमें इजाजत नहीं देता है कि आगे भी आप बने रहें, क्योंकि बहुत सारी बातचीत भी हो गई है और योजना के बारे में श्रोता साथियों को पता भी चल गया है। तो हमें आशा है कि अगले कार्यक्रम में जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमें कॉल लगाकर पूछेंगे, जानकारी लेंगे या फिर अपने सुझाव जरूर देंगे कि हमने इस योजना के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाकर हमने फॉलोअप किया, हमने बातचीत की। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम सुनकर हमारे श्रोता साथी जरूर इस बात पर बिल्कुल अमल रहेंगे कि हमें इस योजना का लाभ लेना है।
1: बिल्कुल मनीष जी, और क्योंकि देखिए घड़ी की सुइयां भी अब हमसे कह रही हैं कि चलिए आपका समय हो गया है, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी हमारा आने ही वाला है। तो श्रोताओं, हम चलते हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनमें अगर आपको लगता है कि और बेहतरीन तरीके से कैसे इन्हें डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इन्हें आप सबके लिए ला सकते हैं, आप सबके लिए कैसे ये एक लाभदायक कार्यक्रम बना सकते हैं हम, उसके लिए आप हमें सुझाव जरूर दें। और सुझाव देने के लिए हमारा नंबर वही है।
0: 92 19 20 77 49
1: तो अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा,
0: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनैबे बारे हमारे सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करत हेंगे कार्यक्रम अम्मा के चौके में। जी हाँ सखियों, आप तो जानती हेंगे कि अम्मा के चौके में अपन और जो बातचीत को करत हेंगे वह बातचीत अपने किचन से जुड़ी भई तो होती हैगी, एक साथ में रेसिपी से जुड़ी भई होती हैगी कि कोनो बढ़िया सी रेसिपी बनावो अपन और सीखत हेंगे ये कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सब में ध्यान देवे वाली बात जा होती है कि अपन साफ सफाई के ऊपर भी विशेष तौर से ध्यान दे देंगे कि साफ सफाई काय जरूरी है अपने लाने, उन चीजों को भी तना गौर अपन और करत हेंगे। और कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा थे जब अपनी सखियां जुड़ के और अपने संगे अच्छी तरह से कार्यक्रम को सुनती हेंगी, साथ ही में फीडबैक भी कार्यक्रम के देती हेंगी। अपने संगे बहुत सारी ऐसी सखियां हेंगी, अब तो आपको बता देवे कि अपनी सखियां इतनी होशियार हो गई हेंगी कि ऑनलाइन के माध्यम से भी रेडियो बुंदेलखंड को सुनने लगी हेंगी। तो हम उन सब सखियन को बहुत ही शुक्रगुजार हेंगे और उनको धन्यवाद करत हेंगे कि वे अपने संगे जुड़ती हेंगी, साथ ही में अपन को फीडबैक भी देती हेंगी। ये कार्यक्रम में आगे आपको बता देवे कि जो भी हमारे श्रोता साथी कार्यक्रम को सुना थेंगे या एक फीडबैक हम तक पहुंचा उठेंगे, तो आपसे भी एक अनुरोध हम करवो चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोनो अच्छी सी रेसिपी या फिर कोनो भी बढ़िया सी बात अपने मन में चल रही हैगी कि अरे जो चीज हम बहुत अच्छी तरह से बना लेते हेंगे और इको हमें रेडियो पे जरूर बताना चाहिए, तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक होकर फोन लगा सकती हैं। जी हाँ सखियों, और आज के कार्यक्रम में अपन मीनाक्षी राय जी की किचन में चला थेंगे, उनकी रसोई घर में चला थेंगे और देखा थेंगे साफ सफाई के माहौल को देखत भय भी अपन को का ऐसो बता रही हेंगे जी के बारे में अपन उनसे जानवी के लाने गए हेंगे उनकी किचन में। तो आज हम चलत हेंगे मीनाक्षी राय जी की किचन झांसी में, तो आपको सुनवात है उन्हें की मुखजुबानी से कि वे अपनी किचन में का बना रही हेंगे। आओ चलत हेंगे मीनाक्षी जी के पास।

0: सबसे पहले तो नमस्कार.
1: नमस्कार.
0: नाम क्या है आपका?
1: मीनाक्षी राय.
0: अच्छा मीनाक्षी जी, आज हम आपकी किचन में आए हैं और जानना चाहते हैं कि आज आप क्या बना रही हैं.
1: मैं आज चने की दाल और सोयाबीन के कबाब बना रही हूँ.
0: अच्छा कबाब. वाह, कबाब सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है. इसके थोड़ा सा आप कैसे बनाती हैं इसके बारे में हमें बताइए.
1: चने की दाल को आप एक कटोरी लेकर
0: जी
1: और उसको रात भर सोख कर दीजिए.
0: भिगो के रखना है.
1: भिगो कर रखना है. और न्यूट्रिला अगर चाहे तो न्यूट्रिला की जो बड़ियां मिलती हैं वो
0: हाँ.
1: बड़ियों को आप रात में भी भिगा के रख सकते हैं. नहीं तो जब आप कुकर में डालो तो कुकर में चने की दाल 2-3 पानी धोने के बाद रात भर भीगी हुई दाल उसको डालकर उतना पानी डालेंगे जितनी दाल उसमें भीग जाए. ज्यादा पानी नहीं होगा. उसी में न्यूट्रिला वाले सोयाबीन की बरिया डालकर और उनमें सारे खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची और गरम मसाला, नमक, मिर्च और दालचीनी, जावित्री, ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में और नमक स्वादानुसार डाल के उसको आप बॉयल कर लें. 4-5 सीटी लगा लें जब उसे बिल्कुल मिल जाए. उसके बाद उसको निकाल कर उसको मिक्सी में पीस लेंगे.
0: अच्छा, ये जो आपने इसमें गरम मसाला इस्तेमाल किया वो खड़ा गरम मसाला?
1: हाँ, खड़ा मसाला. थोड़े थोड़े गरम मसाले डाले जिससे उनका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है. उनकी जो खुशबू है वो ज्यादा अच्छी पता चलती.
0: और फिर हमने उसको मिक्सी में डाल के
1: जब वो हमने बॉयल करा उसके बाद वो इतना पानी हम डालते हैं कि उसी में मिल जाए.
0: जी
1: ज्यादा पानी डालेंगे तो वो बहता हुआ हो जाएगा, वो नहीं होगा. बस उतना पानी हो जिसमें मिल जाए.
0: अच्छा, चने की दाल और जो बरी हमने ली थी सोयाबीन की, वो दोनों ही
1: बॉयल करेंगे. 4-5 सीटी बॉयल करेंगे. उसको बॉयल करने के जब वो ठंडा हो जाए उसको मिक्सी में चला दीजिए. और चलाने के बाद उसको निकालेंगे. उसमें थोड़ा सा बेसन, 2 चम्मच बेसन डाल दीजिए. थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालते हैं, थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे. और उसमें महीन महीन प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया, ये सब डालकर उसको मिला लेते हैं, बाइंड करेंगे. अगर देखेंगे हम बाइंड करने में अगर नहीं आ रहा है बाइंड करने में, तो हम ऐसे भी उन जो उसको कढ़ाई में रिफाइंड डालेंगे. और रिफाइंड डालने के बाद उसको हम उसी में चलाएंगे काफी, तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है. उसके बाद उसकी अगर हम वो बनाते हैं गोली गोल लोई बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से सेट हो जाते हैं. और उनको फिर हम सेकते हैं और लहसुन, धनिया, मिर्ची चटनी के साथ बढ़िया सर्व करिए. ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करिए.
0: अच्छा, इसमें आपने जो चटनी का इस्तेमाल किया, आपने कहा लहसुन धनिया की, तो वो आप कैसे बनाती हैं थोड़ा सा उसके बारे में?
1: धनिया या लहसुन, अगर हरा लहसुन हो तो बहुत अच्छी चटनी बनती है. हरा धनिया और आजकल फूल वाला जो धनिया आ रहा है उसमें धनिया और लहसुन की एक ही बस वो डालेंगे. एक लहसुन का आप हरा वाला डाल दें तो उसमें और हरी मिर्ची, जितना तीखा खाते हो तो ज्यादा मिर्ची डालिए और कम तीखा खाते हो तो कम मिर्ची डालिए. और उसको मिक्सी में, मगर बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है. जगह थोड़ी सी दरबरी जो पिसती है ना, तो उसका स्वाद ज्यादा अच्छा आता है.
0: अच्छा, क्योंकि वो उसमें ना जो हमारा सिलुड़िया वाली
1: थोड़ा फ्लेवर आ जाता है. क्योंकि अब महिलाएं मोस्टली काहिल होने लगी हैं, इसलिए तो चलती है मिक्सी. वैसे सिलबट्टे पे अगर पीसी जाए तो उसका मजा और अच्छा,
0: बहुत ही अच्छा आता है. और खासतौर से हमने देखा है कि जब हम खेत पे जाते हैं और वहां पे ना तो हमारे पास क्या कहते हैं मिक्सी होती है ना कुछ होती है, एक सिंपल सा पत्थर भी आकर रखा है और उसपे पीस के भी खाते हैं ना, तो

0: स्वादिष्ट होता है, वो एक अलग ही चीज होती है। इसको बनाते समय जब आप कबाब बनाते हैं तो क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए?
1: बस पानी जो हमने करा है वो कुकर में जो पानी रख रहे हैं उसको हम इतना रखेंगे, ज्यादा पानी नहीं रखें। जनरली क्या है, लोगों ने डाला एक कोन उठाया और दो कप ग्लास डाल दिया, नहीं, उसको जितनी चने की दाल है उतने ही अगर पानी डालेंगे तो उसी में हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर पानी सुखाने में मुझे बहुत समय।
0: अच्छा,
1: इसलिए
0: ये सावधान।
1: हाँ, ये सावधान। और बाइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा बेसन और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिलाकर हम उसको बाइंड करके उसकी टिक्कियां बना लेते हैं, तब बनेगा अच्छे से, नहीं तो बाइंड होने में दिक्कत हो।
0: बिल्कुल। अच्छा मैम, थोड़ा सा और किचन की साफ सफाई की अगर जहां तक बात करें तो उसमें कैसे क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है?
1: किचन की साफ सफाई हर खाने बनाने के बाद साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है कि कीड़े हो जाना या बहुत चींटियां हो जाना, ये सब एक आम बात है। तो क्या है, विम का अगर वो है या गर्म पानी से, सर्दियों में क्योंकि हम लोग घी का काम बहुत करते हैं तो क्या है, गर्म पानी से अगर किचन साफ करें, गर्म स्लैब उसकी, तो ज्यादा अच्छा साफ हो। और जो विम बार का लिक्विड वगैरह डाल के, विम का लिक्विड वगैरह डाल के तब साफ करेंगे स्लैब तो ज्यादा अच्छा साफ हो।
0: अच्छा, एक चीज और इसमें याद आती है जो उन महिलाओं के लिए है खासतौर से, जो भूल जाती हैं कि रात को सिलेंडर से गैस नहीं बंद करती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: रात को गैस सिलेंडर बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जरा सी सावधानी दुर्घटना घटी वो स्थिति होती है, इसलिए रात में हमें अपना काम सारा खत्म करने के बाद गैस वगैरह साफ साफ कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गैस रेगुलर रूटीन में नहीं साफ करते हैं तो गैस से लीकेज की प्रॉब्लम होती है और बर्नर जब खराब होते हैं तो गैस ज्यादा भी निकलती है उसमें वो होती है, इसलिए आप रात में काम करिए और बंद कर दीजिए, ये एक बहुत बड़ी सावधानी।
0: जी, हम जो किचन साफ करने के लिए या फिर यूं कहिए कि किचन के बर्तन जो हैं वो साफ करने के लिए जो एक कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, उस कपड़े को हम कितनी बार धोना सही रहता है हमें? क्योंकि हम इस्तेमाल तो उसका सफाई के लिए करते हैं लेकिन जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वही गंदा होता है।
1: हाँ, ये होता है जनरली,
0: होता है।
1: हाँ, ये होता है। और ये अच्छी बात है कि काम हो जाने के बाद उसको गर्म पानी से धोकर और अच्छे से साबुन से रगड़कर और उसका उसका गंदगी निकालकर धोकर और निचोड़कर डाल दें, जबकि अगले टाइम के लिए वो तैयार हो जाए, पता चला वो गंदा है, और अगर वही गंदा है तो फिर दोबारा
0: सफाई,
1: फिर जितनी सफाई करी है वो फिर वैसी गंदी।
0: बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब हम किचन में काम करते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं खासतौर से, वो जिद करते हैं कि मम्मी हम भी साथ में रहेंगे, ये वो, तो क्या उनको किचन में रखना सही रहता है उस टाइम पे?
1: छोटे बच्चों को किचन में रखना नहीं चाहिए क्योंकि वो हो सकता है कि हम किचन में कोई काम कर रहे हों और हम ही मुड़ते हैं और कोई चीज झटके से गिर गई तो बच्चे जल जाएगा बच्चा, या कुछ ऐसा हो कि हाथ पैर में लग जाए, इसलिए बच्चों को बिल्कुल किचन में दूर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे कबाब हमें बनाने बताए, साथ में किचन से जुड़ी हुई भी बातचीत बताई है हमें कि साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए, सिलेंडर को हमेशा काम खत्म होने के बाद बंद कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ और संदेश अगर आप हमारी जो महिलाएं हैं, क्योंकि आपको ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा सुन रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: हम तो यही कहेंगे कि आजकल जो सब सफाई से रहें, और जो वैसे तो मैंने देखा है गांव में जब लीपा पोती जो होती है वो बहुत अच्छा लगता है, जब काम
0: अच्छा।
1: वो वैसे भी वो करके और सफाई सुथरा से जब काम होता है किचन, वो जो चौका लगा हुआ होता है वो देखना बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा, और वो लीपा पोता हुआ है, चौक पूरी हुई है, वो जो है वो, इसलिए गाँव की महिलाओं से मेरा विशेष अनुरोध है, और आजकल जो चल रहा है कि जो अपनी सफाई पर, व्यक्तिगत सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अपने आसपास तो साफ रख रहे हैं मगर अपने आप को भी खुद साफ रखना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा,
1: रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर।
0: मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते।

रहेगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे हमारे सभी श्रोता साथी सभी सखियां सुन रही हैं कार्यक्रम अम्मा के चौके से। और अब अपन ने सखियों जानो है गो कबाब बनाबे की विधि की प्रकार की होत हैगी। और अपन जो बातचीत कर रहे थे भी मीनाक्षी जी अपने संगे हती। सो साथियों हम जानत हैंगे कि हमारी जो बहने हैंगी ग्रामीण क्षेत्र की हों चाहे शहरी क्षेत्र की हों सबके अंदर कोनू ना कोनू टैलेंट कूट कूट के भरो रहते है गो, है ना। कूट कूट के मतलब बहुत सारो टैलेंट रहते है गो, लेकिन काहे के उन्हें इतना हिचक रहते हैगी कि भैया हम कैसे बताएं सबके सामने के कैसे का बना थे गो। तो आपको ज्यादा सोच भी की जरूरत ही में नहीं है, काहे कि आप बलिया हमें फोन लगाओ और हम आपको बताएं बड़े आसान आसान तरीका से कि कैसे आप हमें अपनी विधि बता सकती हैगी। जो अपना नंबर है वो जी पे हमारी सखियां फोन कर सकती हैंगी, व्हाट्सएप कर सकती हैंगी। और साथ ही में अगर आपको हिचक कोनो हो रही हैगी बात करीबी में तो एक वॉइस मैसेज जो होते है वो आप हमें भेज सकती हैंगी। तो फिर का हुई है कि हम आपको इतने से फोन लगा के और आपसे बातचीत कर लेंगे कि अम्मा के चौके में आप कहा बताओ चाह रही है। देखो सबके पास अलग अलग आइडिया होते हैं, जैसे मीनाक्षी जी ने अपन को किचन की साफ सफाई को लेकर कछु बातें बताई हैंगी। सो ऐसी ही बातें हमारी और भी बहनन के पास जरूर हुई है। तो

बहनों देखो कहेंगी ना कि अगर तालाब में पानी भरो रहे और वो पानी निकल ना पावे के तो वो बदबू देर लगत है, गंदो हो जाते है वो। लेकिन वो पानी अगर बहत रहे, एक दूसरे से मिलत रहे, आगे बढ़त रहे तो वो अच्छो रहते है, शुद्ध रहते है वो। तो कभी को मतलब है कि ज्ञान कितने को बांटो अपन कम नहीं होते। आपके पास कोनो टैलेंट अगर है वो खाना बनावे को बेहतरीन तरीका आपके पास है, अगर कोनो रेसिपी आपको बहुत अच्छी आते हैगी। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो अपने बुंदेलखंड में ऐसी बहुत सारी पहले जो खाना बनाए जाते आज भी कितों कितों खत्म हो चले जा रहे हैंगे। तो अगर आपके मन में ऐसी कोनो विधि खटखटा रही हो तो आप हमें भी फोन के माध्यम से खटखटा सकती हैंगी और बता सकती हैंगी कि देखो और हमने जा विधि जानी हैगी और ये विधि से जो है हम अपने सब सखियन को बतावो चाहूंगे, तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकती हैं। फिलहाल आपको बता देवे कि अभी कार्यक्रम अम्मा के चौके से जावे को हमारा समय हो रहा है वो, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की अनुमति हमारी और आपकी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लाने खुश रहें, मुस्कुरात रहें और सावधानी पूर्वक अपनों और अपने परिवार को ध्यान भी आपको रखने हैं वो। तो हम चलत हैंगे, नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के अगली फसल में काफ़ी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है? प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और खासतौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीजें रहती हैं, उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा, इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर, वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसमें मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्ट्रेन से, जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है, और फिर हम इसे ग्रो करते हैं।

0: एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला इटरेशन बना लिया अपने फाइबर का, तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं। तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं। तो उसकी वजह से आप सब्जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
1: बिल्कुल, तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
0: तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायोबेस भी होगा क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस पर काफी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन अ लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
1: जी, तो आपने यहाँ पे सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उसे कैसे बेहतर है ये?
0: पहली बात तो जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉरएवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है, हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है वो सारे सिंथेटिक वेस्ट में बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पोल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो की रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो नेगेटिंग इंपोर्ट रिलायंस।
1: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसीलियम को यूज करके और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं?
0: हम जो मशरूम, जैसे हमने माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है जो हमने अचीव कर लिया 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं और ये हम उगा रहे हैं उस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है। और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं फायर रिटार्डेंट हाई परफॉर्मेंस वेयर।
1: जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं है, बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो किस तरह की समस्याएं जो है, मतलब ऑब्वियसली डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये?
0: क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है हमें, हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग। तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं, हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं, तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए हमें कुछ भी बाहर से लेना ही पड़ रहा है, और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं, दे आर पार्ट्स दैट आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर। तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच हैज इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट कैपेबिलिटीज। तो जब हम ये बना लेंगे एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी,

0: प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी जो कि अभी नहीं है।
1: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो किस तरह की जो चुनौतियां वो खत्म हो जाएंगी?
0: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है, सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपेंस, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को, और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है।
1: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होता है उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
0: तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर, उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं। तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अपोज सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंट्री लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती है, तो वो डिग्रीज होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट। तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितनी दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक उस आग में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ताकि इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आए और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने, उनको काफी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए।
1: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ अपैरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट है क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पे भी यूज होता है क्या, वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्रीवेस से ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रहे हैं?
0: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव बेयर है, विच इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टेंस, कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसी कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो निगेट हो जाए। तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे डिफेंस तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सिविल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में, डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है।
1: वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्रीवेस से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा?
0: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत जरूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है, और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है, और उनके जो वो क्योंकि उनके लिए वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं जिससे कि AQI बढ़ता है और पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें।
1: यहाँ पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं?
0: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं, बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं, तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं जो कि हम इन सबका एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है, उसको बना के फिर उस पर हम

0: मशरूम माइसिलियम को उगाते हैं।
1: क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नजर आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी?
0: तो जैसे हमारा ध्येय यही है, इस पूरे प्रोडक्शन में भी हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में, हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं जिसके तहत वो पॉल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है। जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है। तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा या हम उसे रिसाइकल करके, क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और इसके अलावा हम UN की SDG गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उससे भी अलाइंड है। 12 हमारा मेजर गोल है विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड है, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, तो हम लगभग 10 से 12 गोल से अलाइंड है। लेकिन UN SDG 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं।
1: तो आपकी जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है। लेकिन जहां तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रही है मशरूम माइसेलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी?
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में एक रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वेयर जो है वो यूज होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं, जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पद आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें।
1: जैसे मशरूम माइसेलियम है, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नजर आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे?
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक। लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी। तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। और इसमें हम जब जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पर हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं। जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करें और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सकें जहां पे सभी थ्राइव कर रहे हो साथ में।
1: अभी तो ये लैब स्केल पे है, लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे और क्या

0: बिकॉज इट इज सस्टेनेबल, जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं. तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है, और अभी हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर. तो जितना भी मार्केट है, इट्स अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में. उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है. सिंथेटिक से पीपल वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल बायो फैब्रिक्स, और अब बायो फैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है. तो क्योंकि ये 360 डिग्री इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टूवर्ड्स दैट. उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है, तो इसकी वजह से कई चीजें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज को प्रोक्योर करना चाहते हैं. तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे, पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे, और फिर हमें जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे. एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफ कोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल. हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी, और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी, जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें, क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी.
1: न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने इजाद की है.
0: तो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं. तो भारत सरकार की ये जितनी नीतियां हैं, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, और जो उन्होंने आईडेक्स एस्टैब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में. तो इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है. ये बहुत कम ही होगा कि किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए. तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि ये आप लोग कुछ जीते, वो इवन ग्रांट्स देती है. अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है. तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस एक साल के अंदर, वो भारत सरकार की ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए हैं. हमें काफी सहायता, आर्थिक सहायता मिली है उससे. इवन हम जो इंक्यूबेटेड हैं अभी आईआईटी कानपुर में, उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है. ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम आईडेक्स के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर आईआईटी कानपुर को बना पाए, जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है. और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है, उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध हुए हैं, और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज्यादा सहायता मिल रही है. क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं, R&D बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पे रिलाई करता है, और क्योंकि हम एकदम नई टेक्नोलॉजी कुछ बना रहे हैं तो हमें इस चीज के लिए बहुत सारे टेस्ट करने हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन IIT कानपुर ने हमें इसमें बहुत सहायता करी. तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 90% टेस्ट हमने करवाए हैं वो आधे से ज्यादा हमने IIT कानपुर से करवाए हैं, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है टाइम अवेलेबिलिटी में भी, और किन्हीं तरीकों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है हमें IIT कानपुर के द्वारा. तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है, लेकिन आगे चल के भी, क्योंकि R&D जब तक हम सैम्पलिंग पूरी कर लें, पहला MVP बना लें, तब तक विच इज मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप, जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा, तब तक हम चाहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले. तो हम और भी चीजों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं.
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये सारा हम एग्रीकल्चर वेस्ट यूज कर रहे हैं, फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है. फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए, उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए. तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज कर रहे हैं, या फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट, वी आर अपसाइक्लिंग इट और रिसाइक्लिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है. मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें, वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें, 7 से 10 रुपए किलो के बीच में. अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा, जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट. तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं. तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है. तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे.
1: तो अगर मैं आपसे आपका विजन और मिशन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चल रही हैं भैया?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है, और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे, पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहां कोई और ना जा पा रहा हो. तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को

0: ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो, और अभी जितने भी सिंथेटिक चीजों से चीजें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं, और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज में। और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे, हमारा यूएसपी यही है। और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहां पे हम दिखा सके कि अब ये सब कुछ हो गया है, अब बस हमें जग जीतने की देरी है।
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप में थोड़ी भी लगन है, कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी, उसकी मदद होगी, लोगों की सहायता होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले, पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है, जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज करें, क्योंकि हमारे भारत को अभी सब चीजों की बहुत जरूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी, जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच रही है कि देश को किस चीज की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी, आप अपने मिशन और मिशन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना, और इस चर्चा को जो चूंकि हमने कार्यक्रम जो उठाया है वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, किसान साथियों तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस पते पे। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। फोन नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

विधा बुंदेली नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं, वो विधा को आनंद लेते हैं। यही क्रम में आज विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन मिले भैया प्रकाश कुशवाहा जी से, जो गुंदरई के रहवाए हैं। और उनसे जाने के आपने जो विधाएं कहाँ से सीखी हैं और आपने काका गाँव है, ये सब बातें अपन प्रकाश भैया से करें और उनसे जानकारी अपन जान बचा है। सो यही के संगे संगे अपन प्रकाश भैया जी से मिलवे से पहला एक बढ़िया से गीत को सुनत, गीत को आनंद लेत और फिर ये गीत के बाद अपन प्रकाश भैया से बात आगे करें। तो कहना अपन प्रकाशी भैया के गाय भय गीत को अपन सुन लेते हैं। सुनत है ये गीत को जी गा रहे हैं प्रकाश भैया जी।

0: बिल्कुल दोस्तों, अभिमान त्याग देना जो तुझ में समाया है। देखो कितना बढ़िया गीत अपन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया प्रकाश चंद कुशवाहा जी। अब आओ दोस्तों प्रकाश चंद जी से आगे बात और करते हैं कि आपने कहाँ से सीखी है और कैसे जब विधाएं सीखी हैं। सो आप मिलते हैं प्रकाश भैया जी से।
1: अच्छा प्रकाश भैया, जा बात बताओ कि बात करें अपन गावे बजावे की, तो आपने जो गावो कैसे सीखो?
2: भैया हम तो छोटे रहते जब सुगावन में राम सभा होती।
1: अच्छा,
2: महीना भर में कहो एक दिन बैठ जाए, कहो महीना भर में दो बार बैठ जाए, और कहो हफ्ता में एक बार बैठ जाए।
1: अच्छा, तो राम सभा में बैठे,
2: राम सभा में जाऊते।
1: अच्छा, इसके अलावा आपने कहा गुरु बनाओ तो कैसे हुई?
2: नहीं, हमने गुरु बनाओ तो भैया एक अपने रंगीला साहब हते।
1: अच्छा, रंगीला?
2: हाँ, रंगीला
1: कहाँ के हते? रंगीला
2: हाँ, सी के हते।
1: हाँ,

0: भी है।
1: अच्छा, उनका रंगीला नाम कौन नाम से जाना तूने?
0: रंगीला रंगीराही।
1: रंगीराही,
0: हाँ, रंगीला साहब बोला तूने।
1: हाँ,
0: कुशवाहा जी है
1: तो उनसे आपने सीखी।
0: हाँ,
1: अच्छा, उनने आपको क्या चीज बताई थी सबसे पहले कि कौन हिसाब से आपने गुरु मानो तो उन्हें?
0: अब जो मानो तो क्या, बहुत अच्छा लिखा था।
1: अच्छा, लिखा था वे?
0: हाँ, वे लेखक है।
1: हाँ,
0: तो उनकी लेखनी पे हम लोगों ने गाओ थोड़ा सा, हम लोगों को अच्छा लगा।
1: हाँ,
0: और उनकी वातावरण अच्छा लगा।
1: हाँ,
0: इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा गावो सीख गए।
1: बिल्कुल सही बात है। जब आपने देखो लेखनी की बात कही तो आप जो बता पाए कि आपने उनकी सबसे पहली लेखनी कहती बात जो उनने लिख के आपको दी थी कि आपने गाई हो की लिखी भाई
0: देखो
1: कहा गाओ तो आपने ऐसा?
0: अब देखो, उनने एक बहुत पहले एक चीज लिखी थी शुरुआत में।
1: हाँ,
0: एक बुंदेलखंड की चीज लिखी थी।
1: हाँ,
0: रंगीला साहब आते हुए।
1: हाँ,
0: और वे लिखते अपने, अब भजन कीर्तन है।
1: हाँ,
0: सब चीजें हैं।
1: हाँ,
0: तो भजन भी लिखते हुए, लोकगीत भी लिखते।
1: हाँ,
0: अब भी लिखत हुए,
1: अब भी लिखत,
0: अब भी लिखत है।
1: हाँ,
0: लेकिन अब बहुत
1: अच्छा। आपने उनसे संपर्क कब से नहीं करो? आपकी मुलाकात उनसे कब से नहीं हुई?
0: अभी हमारी कम से कम 5-6 साल से,
1: 5-6 साल से उनसे संपर्क नहीं हो
0: पाया है।
1: अच्छा, तो आपने उनकी का चीज गाई का आपको है ध्यान के कौन चीज आपने गाई?
0: अब कैसे अभी याद नहीं है उसमें।
1: हाँ, तो उनने कई चीजें ऐसी आपको?
0: हाँ, चीजें गाई है, ले गई है। पार्टी भी हम लोगों की बनी है।
1: अच्छा।
0: हाँ, मंडल भी है।
1: अच्छा, मंडल भी?
0: मंडल भी है।
1: तो आपने कभी रेडियो बुंदेलखंड पे गाओ?
0: हाँ, गाया है हमने रेडियो बुंदेलखंड पे गाया है।
1: तो जो रेडियो बुंदेलखंड पे आपने गीत गाए वे उन्हीं के लिखे गाए या फिर कछु अपने और कवियन के हैं?
0: नहीं, उन्हीं के लिखे गाए हमने।
1: अच्छा, उन्हीं के लिखे
0: गाए? साहब के लिखे गाए।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: तो आपने कछु जो गाओ थे रेडियो बुंदेलखंड पे उनको तंथुरो याद है कि हमने का चीज गाई थी?
0: हाँ, हमने एक वो गाई थी तो उनका थोड़ा सा एक गजल थी।
1: हाँ,
0: अभिमान त्याग देना।
1: अच्छा,
0: एक गजल गाई थी हमने, वो बहुत शुरुआत में गाई थी हमने, आज कम से कम 6-7 साल पहले। थोड़ा सा याद है कि अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है।
1: हाँ,
0: और हंसा की चाल भैया कभी चल नहीं पाया है।
1: हाँ,
0: हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं
1: चल
0: पाया,
1: नहीं
0: पाया है। अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है, वो हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं,
1: नहीं
0: पाया,
1: पाया
0: ये चीज गाई थी
1: आपने? ये चीज गाई?
0: हाँ।
1: अच्छा, जब से आपने उतर से गाबो छोड़ो, मतलब जब उतर रिकॉर्डिंग करे आए थे उके अलावा फिर बैठे आप कहो मंडल में सभा में के?
0: नहीं, हम जब से वहाँ से छोड़ा तो हम लोग बैठे नहीं पाए हैं।
1: हाँ,
0: अपने काम में बिजी हैं, बच्चे हो गए हैं, तो थोड़ा गाओ बजाओ कम हो गया है।
1: सही है, अब गृह जीवन में
0: समस्याओं से बहुत जूझना पड़ गया है।
1: हाँ, सही बात है,
0: क्योंकि कुछ है नहीं अपने पास, मिल जाएगा जमीन नहीं है।
1: हाँ, सही बात है,
0: तो अपन दो मजबूरी कर रहे हैं और पेट पाल रहे हैं।
1: सही बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक संगे संगे जो गावो बजावो है इसे मनुष्य के जो जीवन है इस पर क्या प्रभाव पड़ती है गाय से?
0: एक जो पुरानी इतिहास याद आते हैं कि हम पहले कैसे थे।
1: हाँ,
0: आज क्या है हम लोग।
1: सही बात है
0: भाई, गाने बजाने की एक जो परंपरा है।
1: हाँ,
0: बुंदेली भाषाएं हैं।
1: हाँ,
0: इनमें सारी भाषाओं का कीर्तन भजन होते हैं।
1: हाँ,
0: तो एक जो है कि हम लोग एक इतिहास को उठा लें अपना, कि कोई इतिहास ही से गाया जाता है।
1: हाँ, सही बात कह रहे, इतिहास से भी गाया जाता है।
0: तो आज पुराना इतिहास को उठा के देखें अपन।
1: हाँ,
0: तो पुराने इतिहास में बहुत कुछ मिल रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: और अब पुराने इतिहास तक कौन जा पा रहा है?
1: सही बात,
0: अब नए अपने अपने बना रहे हैं।
1: और नए पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ के
0: नए तरीका से बना रहे हैं।
2: कट फीस में आने लगे।
1: हाँ, कट फीस में आने लगे। सही बात कह रहे हैं आप,
2: न तो संगीत और गायन टूटे हुए हृदय की औषधि है।
1: हाँ, टूटे हुए हृदय की औषधि है, सही बात कह रहे। और गावे बजावे से अपन खो जो अपनो शरीर है या फिर
2: उमंग
1: पैदा होते ही
2: शक्ति संचार पैदा हो, शक्ति को संचार पैदा हो,
1: शक्ति को संचार पैदा होते ही
2: गावे।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं होत के अगर अपन भक्ति में हो जाए या फिर गावे में उतर जाए तो अपनों सब दुख भूल जाते हैं।
2: हाँ, पे सही बात है कि जब आदमी
1: गावे में
0: कीर्तन पे आ जाता है तो सारी चीजें छोड़ देता है, क्योंकि उसको सतता ही उसमें दिखाई देती है।
1: बिल्कुल,
0: कि अच्छा और बुरा क्या है, तो अपने आप नियमों का पालन करने लगता है।
1: सही बात है। तो इसके अलावा आपने और कछु सीखो कभू ऐसे जैसे क्यों पार्टी में गए हो कभू आपकी आमने सामने जवाबी कीर्तन में गए हो?
0: जवाबी वाबी न लड़ते है ना आज तक कोई गाया है?
1: अच्छा, आपने जवाबी में नहीं गाओ?
0: नहीं नहीं, हम नहीं गाते है ना। हमको हमने सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में यही रही है कि हमको इतना समय नहीं रहा है और ना तो हम इतना गा पाते हैं।

0: सही है,
1: थोड़ा बहुत बहुत तो हमारे माता दिन भैया आ जाते हैं, सो हमने बोल दिया है।
0: चलो बहुत अच्छी बात, वो कहावत भी नहीं है कि अगर मन में है होलक,
1: हाँ तो खंजड़ी का ढोलक,
0: हाँ है क्या नहीं? सही बात है, अगर मन में होलक है तो ना खंजड़ी चाने ना ढोलक चाने, अपने गुनगुना लेते हैं।
1: अभी पहले की परंपरा में सुबेरे 5 बजे जनी मन से उठ जाऊते,
0: हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं,
1: पीसन लगाती,
0: हाँ
1: 5 बजे उठ के पीस रही हूँ, गावे को बड़ा शौक है तो उस टाइम में,
0: हाँ बिल्कुल सही बात,
2: भी कर रही हूँ गावी रही,
1: गा रही हूँ कम से कम 10-10 किलो पिसिया पीसे रही,
0: सही बात,
1: पूरे परिवार को चक्की पे कहूँ पिसावे आटो नहीं गई,
0: सही बात कह रहे हैं आप,
1: उनने अपने वही पिसा के
2: वो
1: गावे गावे में उन्हें 10 किलो गेहूँ पीस लो, अपने मोड़ी मोड़ को बना के खुआ दो,
0: सही बात,
1: लेकिन उन्हें जो शौक है तो हमें गाने हैं,
0: हाँ सुबह चकिया के बहाने गा भी लेती,
1: गा भी लेती
0: और अपनो काम भी कर लेते हैं, सुबह परिवार के खावे को पीस लेती,
2: बीमार नहीं होती
0: और गा लेते
2: हैं, सही बात है, बीमार होने
1: हम क्या कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बीमार, आज देखो तुम तो 100-100 साल की बाई आज भी बैठी,
0: हाँ सही कह रहे, सही कह रहे हैं,
1: बैठी
0: हाँ बिल्कुल
1: गा रही है खूब।
0: अच्छा प्रकाश भैया आपसे एक बात और जानना चाहे कि आपकी माताजी को कभी आपने देखो गाउत चकिया पीसर?
1: नहीं हमारी माताजी ने खूब गाया है, आप तो बुढ़ी हो गई खैर,
0: नहीं आप तो बुढ़ी हो गए लेकिन जब भी अपने परिवार चला उठते अपने बाली बच्चन हो खुआ पिया उठते उस समय पे तो आपने देखो ही है कि माताजी पीस रहे हैं गा रहे हैं,
1: खूब गाया उन्हें, खूब उन्हें चक्की चलाई हो, चकिया चलाई,
0: हाँ। और आपकी शादी क्या साल की हते जब हो गई थी?
1: हमारी शादी करीब 30-32 साल की लगभग में गई भैया।
0: तो आपकी मिसेज को क्या नाम है?
1: हमारी मिसेज का नाम है जानकी देवी कुशवाहा,
0: जानकी देवी कुशवाहा,
1: हाँ।
0: अच्छा कब जानकी देवी ने पीसो?
1: नहीं नहीं नहीं मिलो
0: उन्हें नहीं, उन्हें नहीं मिलो, अच्छा जब चकियां नहीं हत बची थी पीसवे के लाके या फिर जे पीस के नहीं जानती, या फिर
1: चकियां तो आज भी रखी,
0: चकियां तो आज भी रखी,